मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:44 हुए। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
4: People to people connect.
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष

0: ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

शिक्षा के बिना समझदारी खो जाती है, समझदारी के बिना नैतिकता खो जाती है, और नैतिकता के बिना विकास खो जाता है। ज्योतिबा फुले।

अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए दिलीप कोरी के स्वर में विकास राय सर की देशभक्ति रचना।

0: अभी आपने दिलीप कौर के स्वर में ये देशभक्ति रचना सुनी, और श्रोताओं अब सुनिए साधना सरगम का गाया भजन, रचना ओम व्यास की है।
1: भगवान गणेश की पूजा आराधना सदा सुपरिणाम देती है। आदिदेव गणेश की भक्ति सदा सुखकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी है। विश्व में जो काम भगवान गणेश के नाम से आरंभ होता है पूर्णता को प्राप्त करता है। सृष्टि के प्रथम दिवस से प्रथम देव गणेश पूजित और वंदित हैं। ओम म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति एल्बम ओम गणेश भक्ति भावना और गजानन साधना की संगीतमय प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश का गाया ये भजन। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का है, वाचक है शैलेंद्र जोगी।
1: जिस देश जाति में जन्म लिया
0: श्रोताओ, वाचिका है माधवी येंडे।
1: जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जहां हम जन्म लेते हैं उस माटी की सुगंध दुनिया के कोने कोने में फैले, यही प्रयास हमें सतत करना चाहिए। धर्म जाति भाषा चाहे अनेक हो, लेकिन अनेकता में एकता की हमारी पहचान हमेशा अक्षुण्ण रहे। आज देश में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग भाषा के नाम पर, जाति संप्रदाय धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी तो सेंक लेते हैं, लेकिन वो ऐसा बीज बो जाते हैं जो हमें कई सालों तक कांटा बनकर चुभता रहता है। किसी भी प्रकार का टकराव देश हित में नहीं होता। एक ओर जहां हमने विकास के नए नए मापदंड स्थापित किए, वहीं हमने विनाश के भी अत्यंत उन्नत तरीके ईजाद कर लिए। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। आतंकवाद सुरसा की तरह फैल रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सोच देश हित में विकसित करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी भी देश का भविष्य बच्चों और युवाओं पर होता है। यदि आज का युवा मुख्य धारा से बिछड़ गया तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। युवाओं को चाहिए वे ऐसा कार्य करें जिसे आने वाली पीढ़ी याद रखे और उनके कार्य प्रेरणा पुंज बनकर देश और समाज को सदैव आलोकित करते रहें। आपसी प्रेम सौहार्द भाईचारा हमारी पहचान होना चाहिए। ऊंची ऊंची उन्नत मर्यादाओं की बात करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन उन मर्यादाओं की रक्षा करने वाले लोग शायद ही कभी नजर आते हैं। आज देश में भाषा को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है। ये जंग कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा छेड़ी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। हमारा भारत अखंड है और अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इसे बरकरार रखना है। ऐसा करके ही हम विश्व गुरु की पदवी पाकर संसार का मार्गदर्शन कर सकते।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का था, वाचिका थी माधवी एंडे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी।

यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पतिवियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर अनुराधा पौडवाल का था। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी की। इसमें किसान भाई सुने इस समय के लिए कृषि सलाह।
1: चलिए, इस समय कौन कौन से खेती के कार्य आपको करना है हम बताते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद बीज को अच्छी तरह से सुखाकर अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज की पुरानी कोठियों को भलीभांति साफ करके कीटनाशक छिड़क कर अनाजों का भंडारण सुनिश्चित करें। जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, इन्होंने गर्मियों में फसलें नहीं ली हैं, वे अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें ताकि

भूमि के अंदर उपस्थित कीड़े और बीमारियों के अवशेष जो शेष रहते हैं वो तेज धूप में नष्ट हो जाएं। गर्मियों में आप मुख्य रूप से मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, चेरी, मक्का, ज्वार, बरबटी और साग सब्जी को लगाते हैं, तो उनमें

0: उसको गिरने से बचाने के लिए रिजर्व की सहायता से मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें और 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि गन्ने में सिंचाई की जरूरत बहुत पड़ती है। सिंचाई सर्पाकार विधि से करना चाहिए। भूमि में नमी को रोकने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों की 10 से 35 सेंटीमीटर की मोटी तह भूमि के ऊपर बिछाएं ताकि नमी संरक्षित रहे। जायद मौसम की हरे चारे वाली फसल जैसे ज्वार, मक्का और लोबिया में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और मक्का और ज्वार फसल में नाइट्रोजन के उर्वरक दें। गर्मियों की जो मूंग और उड़द है उसमें यदि फलियां पकने लगी हों तो फलियों के तुड़ाई के कार्य को आरंभ किया जा सकता है ताकि फलियां चटकने ना पाए। गर्मियों में किसान भाई जो हम फसल लेते हैं ये फसल थोड़ी कठिन होती है, इसलिए फसलों का प्रतिदिन बहुत बारीकी से बहुत पास से निरीक्षण करें, खेतों में घूमें। यदि आपको उसमें कीट दिख रहे हो या बीमारी दिख रहे हो इसमें आवश्यकता अनुसार दवाइयां छिड़कें। सबसे अच्छी बात तो ये होगी जो जैविक दवाइयां हम समय समय पर बताते हैं आपको उनका प्रयोग करें, या घरेलू दवाइयां जो बनाते हैं छाछ के नीम की उनका प्रयोग करें। भूमि का और जल का संरक्षण के लिए मेड़बंदी का कार्य का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो इस कार्य को करें ताकि आपकी भूमि और जल दोनों ही वर्षा के ऋतु में संरक्षित हो सकें। धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। खरीफ फसलों की बुआई के लिए उन्नत बीज, खाद, इन सब की अग्रिम व्यवस्था आपको अभी से कर लेनी चाहिए। किसान बहनों भाइयों, जैसे कि हम समय समय पर बताते हैं आपको स्वयं का बीज के उत्पादन की बात, और यदि आपने स्वयं का बीज उपयोग करने की योजना बनाई है तो बीज को बिनकर छानकर साफ सुथरा कर लें। साथ ही ये भी अच्छा होगा कि आप अपने बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आपके बीजों का अंकुरण परीक्षण कैसे करना है, पर हम आपको बता देते हैं। अंकुरण परीक्षण के लिए सबसे पहले तो क्या करें, 100 बीज आप ले लें, उन 100 बीजों को अंकुरित करना है। अंकुरित करना तो वैसे आप जानते हैं, पर फिर भी हम बता दें आपको। नमी वाला कपड़ा या गीला बोरा लेके उसमें आप इन बीजों को रख सकते हैं लगभग 24 घंटे तक, जिसमें ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। और यदि अंकुरित ये बीज हो जाते हैं तो आप इनकी गिनती कर लें। 100 बीज में से जितने बीज अंकुरित हुए होंगे वह कहलाएगा अंकुरण प्रतिशत। और यदि आपके बीज का अंकुरण प्रतिशत 70 से अधिक निकला, यानी कि 100 बीज जो आपने अंकुरण के लिए रखे थे उसमें से 70 बीज से अधिक अंकुरित हुए हैं, इसका मतलब ये मान के चलें कि आपका बीज पुण्य के योग्य है। यदि 70 बीज से कम अंकुरित होते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस बीज को ना बोएं। खरीफ फसलों की बोने के पहले अपने खेत की मिट्टी के नमूने की जांच अवश्य करवाएं। इससे आपको पता लगेगा कि उसमें किन तत्वों की कमी है और किन तत्वों को देना जरूरी है। इससे आपका पैसा बचेगा, आपकी लागत कम होगी और आपका खेती का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा।
1: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे इस समय की कृषि सलाह। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम दिल्ली केंद्र से आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रसधार। कलाकार होंगे नेपाल सिंह राजपूत और मुनीम लाल बरमैया। 9:30 पर नाटक आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा। 10:05 पर सुनिएगा गौरव गान की 150वीं वंदे मातरम। 10:10 पर विश्व दर्पण सारंगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुनिएगा। 10:20 पर

11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम होगा, इसमें सुनिएगा श्रीमती संध्या अग्रवाल की वार्ता, विषय होगा घरेलू बजट प्रबंधन। लोक संगीत 1:33 पर

सुगम संगीत 1:45 पर। पांच बजे न्यूज हेडलाइंस, 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम होगा युवाणी। 5:33 पर फिल्म संगीत। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लोक संगीत। 6:30 पर सुगम संगीत। 6:45 पर किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा 7:21 पर। इसमें सुनिएगा श्रीमती नीलम श्रीवास्तव की बुंदेली कविता पाठ। 9:30 पर धारावाहिक हंसना मना है। आज आप सुनेंगे इसका पहला भाग, आलेख हेमंत कुलकर्णी का होगा, परिकल्पना विमल कांति यंडे की, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वैजनाथ गौतम। 10:00 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन 10:30 पर। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले

0: जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code Bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than 1 dozen people are injured and admitted to different hospitals. 10 people died in Mirzapur, 9 in Fatehpur, while 5

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 35 किश्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपये प्रतिमा दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमा कर दिया गया है।
4: फूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान के आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था, माताएं बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा ग्राम साड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। श्रोताओं, जीवन में जीवन को सुचारू रूप से यदि चलाना है तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों का संचय करते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं से परे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संचय भी उतना ही आवश्यक होता है और वो है ज्ञान का संचय। धन का संचय आपको अभिमानी तो वस्तुओं का संचय आपको लालची बना देता है, किंतु ज्ञान का संचय आपको इन दुर्गुणों से सदा ही दूर रखता है। ज्ञान चक्षु सदा खुले रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान रूपी सागर में हमेशा गोते लगाते रहें। जहाँ भी ज्ञान समागम हो वहाँ केवल उसका श्रवण ही नहीं करें अपितु उसे अपने अंतःकरण में आत्मसात भी करें। समय के साथ भौतिक संसाधन तो नष्ट हो सकते हैं किंतु अर्जित ज्ञान को कोई आपसे नहीं छीन सकता। ज्ञान अर्जन के साथ ये भी स्मरण रहे कि हमारे भीतर अभिमान लेश मात्र भी जगह ना बना पाए, क्योंकि ज्ञान जब अभिमान का चोला पहन लेता है तो हमारे उस संचय का क्षय होने लगता है। ज्ञान के संचय का क्षय होना इस बात का भी सूचक है कि हम उन अमूल्य बातों को धारण करने की योग्यता अब नहीं रखते। ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र भी नहीं होती और उसका आदान प्रदान अंत समय तक संभव है। रावण ने भी मरते मरते लक्ष्मण को ज्ञान से

समृद्ध किया। भीष्म पितामह ने भी मृत्युशैया पर अपने प्रियजनों को जीवन के कुछ उपयोगी सूत्र दिए। जब किसी से कुछ ज्ञान ग्रहण करना होता है तो उसमें कृतज्ञता का भाव निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि तब कोई अपने समय और ऊर्जा से आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है। ज्ञान ही आपकी हर समस्या की कुंजी है। फिर चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा हो, ज्ञान की अनुभूति का भाव व्यक्ति को सही मार्ग से विचलित नहीं होने देता। समय के साथ बढ़ता अनुभव भी ज्ञान की धारा को और प्रखर बनाता है, जो जीवन की नैया को आगे बढ़ाने में पतवार की भूमिका निभाता है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब बात करते हैं जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता की। मनुष्य सदैव स्वतंत्रता की खोज में रहा है, वो बंधनों से मुक्त होकर अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। प्राय लोग स्वतंत्रता का अर्थ ये समझ लेते हैं कि मन जो चाहे वही किया जाए, किसी नियम या अनुशासन को स्वीकार ना किया जाए, किंतु ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि मन की दासता है। मन अत्यंत चंचल होता है, वो कभी इच्छाओं, कभी भय, कभी मोह और कभी अहंकार के प्रभाव में निर्णय लेता है। यदि मनुष्य केवल मन के पीछे चलता रहे तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने विवेक को जागृत कर मन को नियंत्रित करना सीखता है। यही आत्मबोध की शुरुआत है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तब उसे अनुभव होता है कि बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूर्णतः हमारे अनुकूल नहीं हो सकती, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाता है। वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन, धैर्य और आत्मसंयम से जन्म लेती है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसी दिशा में स्थिर रहने की शक्ति देती है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विचारों की पवित्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इससे उसके मन में धैर्य और निडरता के भाव जागृत होते हैं और वो ईर्ष्या, क्रोध, लोभ आदि बुराइयों से भी दूर होने लगता है। अंततः स्वतंत्रता का अर्थ मन की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना नहीं बल्कि मन को सत्य विवेक और आत्मिक चेतना के अनुरूप डालना है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तभी उसका जीवन शांति, संतुलन और आत्मिक आनंद से भर उठता है।

लीजिए, अब सुनिए। नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अनजान का लिखा गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम ईश्वर।

फिल्म ईश्वर का ये गीत आपने सुना नितिन मुकेश कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में, गीतकार थे अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब हम आपको सुनवा रहे हैं साबरी ब्रदर्स सोनू निगम, अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर की आवाज़ में, समीर का लिखा गीत, संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म का नाम ये दिल आशिकाना।

0: अब सुनिए फिल्म लैला मजनू की ये कव्वाली, मोहम्मद रफ़ी, अजीज नाजा, शंकर शंभू, अंबर कुमार और साथियों की आवाज़ में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन और जयदेव ने।
1: Okay, ma-

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: The UAE is an important partner.
5: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घ कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
6: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंत

0: अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार।

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाईं। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की

बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे।

इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरी चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरी चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई 1899 को वासुदेव हरी चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरी चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में योजना की 36वीं किश्त अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है।

0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसहार। कलाकार है नेपाल सिंह राजपूत। आइए सुनते हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे नेपाल सिंह राजपूत और साथियों के स्वर में ये बुंदेली लोकगीत। अब सुनिए मुनीम लाल बरमैया के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: लोक रसधार, ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।
1: अब आप सुनेंगे नाटक जिसका शीर्षक है आसमां और भी है। इस नाटक की लेखिका हैं इंदिरा दांगी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
2: प्रस्तुत है नाटक आसमां और भी हैं। लेखिका इंदिरा दांगी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
3: आखिरी पेपर हुआ और चलो अपनी तो जान छुटी पढ़ाई से। अब 8वीं पास तो अपने को हाथ से ही कहने लगूंगी, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। अरे शांति, तू इतनी चुप चुप क्यों है?
4: विमला, वो
3: पेपर तो सबसे अच्छा तेरा ही गया होगा, है ना?
4: हाँ विमला, पेपर तो बहुत अच्छा गया, पर
3: अरे तब क्यों रो रही है?
4: कल रात ही शुद्धि ने मुझे बताया कि 2 दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी और
3: अरे अरे रो मत, तेरी शादी नहीं होने दूंगी। हमने अपनी किताब में पढ़ा है ना कि नाबालिग की शादी कानूनन अपराध है।
4: मेरे मम्मी पापा ये बात नहीं समझेंगे।
3: हमारी क्लास टीचर उन्हें समझाएंगी तो जरूर उनकी बात मानेंगे।
4: रीना मैम।
3: हाँ देख, वो सामने से जा रही है प्रिंसिपल मैडम के साथ, मैं उन्हें रोकती हूँ।
4: नहीं विमो, ऐसा मत कर, मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे।
3: मैम।
5: अरे रीना, तुम्हारी ये स्टूडेंट तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। भाई आज तो परीक्षाएं खत्म हो गई, इन बच्चियों को तो हमसे दूर भागना चाहिए। कमाल है।
6: मैम आपने इस कन्या विद्यालय को मॉडल स्कूल जो बना दिया है, अब बच्चियां अपने घरों से ज्यादा स्कूल को पसंद करती हैं।
5: ओहो, इसका पूरा इल्जाम मुझे ना दो। स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने के लिए पूरा टीचिंग स्टाफ बराबर का गुनहगार है।
3: मैम, मैम, मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है।
6: अरे अरे, पहले सांस तो ले लो।
3: मैम, बड़ी मैम, ये मेरी सहेली शांति है।
6: ये दोनों मेरी ही क्लास की छात्राएं हैं मैम। कहो क्या काम है हमसे?
3: शांति के 2 दिन बाद शादी है।
5: क्या? लेकिन ये तो इतनी छोटी सी बच्ची है
6: और कक्षा की सबसे होनहार छात्राओं में से भी एक है।
5: उफ, कैसे माँ बाप हैं ये?
6: अरे माँ बाप की कुछ ना पूछिए मैम, मैं तो एक बार पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ और वो भी उन्हीं के घर पर।
5: अच्छा, क्यों?
6: इसी सेशन के शुरू की बात है, शांति का अचानक स्कूल आना बंद हो गया था और ये अच्छी स्टूडेंट है तो मैं इसके घर चली गई। पता है आपको क्या हुआ था? इसके पिता ने इसका स्कूल बंद करके इसे किसी घर में दिन भर के काम के लिए लगवा दिया था।
5: ओह, कैसे पिता है?
6: शराबी आदमी और कैसा पिता होगा, दिन भर कबाड़ी के काम में जितना कमाता है शराब में उड़ा देता है, फिर बीवी सुनीता को मारता पीटता है और उसकी मेहनत की कमाई भी छीन झपट कर ले जाता है। घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने 4 बच्चों का पेट कैसे पालती है इसकी माँ, ओह बेचारी वही जानती है।
5: ओहो, लेकिन हमें इसे दूसरी सुनीता बनने से बचाना होगा रीना।
3: शांति के झुग्गी स्कूल के पीछे ही है, आप चलिए, बस 1 मिनट में पहुंच जाएंगे।
5: स्कूल में अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन चलो पहले ये ही काम करके आते हैं। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से रोकना बाकी सब कामों से कहीं ज्यादा जरूरी है।
3: मैम, शांति का घर आ गया, देखिए वो रहे उसके मम्मी पापा, झुग्गी के बाहर झालर लगा रहे हैं, शादी की तैयारियां हैं ये सब।
5: आओ शांति।
4: नहीं मैम, मैं घर नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे।
6: नहीं मारेंगे, और अगर मारेंगे तो तुम उनका घर छोड़ देना।
4: घर छोड़ दिया तो रहूंगी कहाँ?
6: चाइल्ड लाइन तुम्हारे रहने पढ़ने की व्यवस्था करेगी, तुम्हारे जैसे हर बच्चे को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर तुम वहां ना रहना चाहो

0: तो मेरे घर चली चलना मेरी बेटी बनकर।
1: मैम,
2: ओ सुनीता, तनिक जा झाला रहते ऐसे तो पकड़, मैं ऊपर चढ़कर इसे बांधता हूँ।
3: हाँ लाओ, वो सुद्दी अभी तक झाई मर रही नास मिटी। जा आज काम पे मोरी जगह तय चली जा, धीरे धीरे कर रही हो सब घरों को काम।
4: नहीं मम्मी, मेरे हाथ दुखते हैं।
3: हाथ दुखते हैं तो हमारे भी हमेशा दुखते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़े है। अब ब्याह को घर है, मैं अकेली के चार हो जाऊं, उतने काम छूट गो तो भूखे मर है सब।
2: जा मोड़ी, सीधी जा काम पे। तेरी वो बहन को तो पढ़ाई को ऐसो चस्को लगो है कि मानो कलेक्टर नहीं बन जाए पड़े से।
0: बिल्कुल, कलेक्टर भी बन जाएगी किसी दिन, अगर आप उसे पढ़ने का मौका देंगे तब।
2: आप लोग?
5: मैं शांति की क्लास टीचर हूँ और ये है हमारी प्रिंसिपल मैडम।
3: आओ मास्टरनी जी, बड़े शुभ मौका पे आई हो। ओ मोड़ी सुद्दी, तनिक भैया को गोद में तो ले ले। शांति, खाट बिछा मैडम जी के लाने, मैं पानी लेके आ रही। मैडम
5: नहीं, हमें पानी नहीं पीना है। आप बैठिए शांति की मम्मी, हम आप दोनों से ही बात करने आए हैं।
3: हाँ,
0: आपकी गोद का ये बच्चा कितने महीने का है?
3: जय महीना 10 तारीख को, पूरे 6 महीने को हो जाएगा हमारी इनकू।
5: कितने बच्चे हैं आपके?
3: 4 है मास्टरनी जी। जय शांति, जय शुद्धि, वो उतने खेल रही ना, वो 2 साल की संस्कृति, जे 6 महीना को हमाओ रिंकू।
5: इतने बच्चों की परवरिश में तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा आपको।
3: अब क्या बताएं जी, जय चिंता में खटते मरते रहते हैं दिन रात कि जिन बच्चन को पेट कैसे भरे।
0: लेकिन आपकी बेटी शांति तो पढ़ने में बहुत होनहार है भाई, कुछ सालों की बात है, फिर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे।
2: अब पढ़ाबो लिखाबो तो हमारे बूते की बात है नहीं, इज्जत से ब्याह ठिया दे, जॉय हो जाए, सुगंगा नहाए।
5: लेकिन शांति तो अभी बच्ची है, इतनी छोटी लड़की की शादी आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि शादी के बाद उसकी क्या जिंदगी होगी, क्या भविष्य होगा? छोटी उम्र में माँ बनने पर उसकी जान भी जा सकती है, क्या एक बार भी आपने ये सोचा?
3: काय शांति, ये मास्टरनियों को कैसे मालूम चलो कि तुम्हारा ब्याह है? अरे जय मारे, हम तुम्हें नहीं बता रहे थे। नासमिटी कहीं की, अपने माँ बाप की बेइज्जती करावे के इन्हें ले आई।
4: नहीं मम्मी, मैं तो।
5: बच्ची को मत कोसिए आप।
2: ए मैडम जी, जो ज्ञान दी गयो अपने स्कूल में, हमें जा की जरूरत नहीं है। हमारी लड़की है, हम चाहे मारे चाहे काटे चाहे ब्याह दें, हमारा अधिकार है।
0: अच्छा, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको 2 साल की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।
3: काय जी मोड़ी, हमें जेल की धमकी दिलवा रही, जय दिलन के लाने हमने तो जन्म दियो तो है? नास मिट्टी कहीं की।
4: मैम, बड़ी मैम, मुझे बचाइए।
5: अरे अरे अरे, देखिए देखिए देखिए, आप इस तरह उस पर हाथ नहीं उठा सकती हैं और ना ही जबरन उसकी शादी करवा सकती हैं। अगर आप लोग हमारी बात नहीं समझेंगे तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
3: अरे मास्टरनी जी, आप काय को हमसे झगड़ा करबे काजे आ गई हैं? कौन कह रहा हो कि हमारी बेटी को ब्याह हो रहा है? अरे हम तो सिर्फ उसकी सगाईया कर रहे हैं।
2: हाँ हाँ, अरे मोड़ी की केवल सगाई है, ब्याह नहीं है। अबे अब मैडम जी, आप दो जनों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इतने से जाओ।
3: ए शांति, यहाँ खड़ी खड़ी का पंचायत देख रही है, जा सुद्दी को ले जा, हमारी बत्तल आज सब बंगलन में तू काम करके आ जा।
4: हाँ मम्मी, चल सुद्दी।
2: कायरी बिम्मो, तू ते काय खड़ी है? अब यहाँ का कोई खेल तमाशा चल रहा है? मैं सब जानत हूँ, असल गुड़ी तेरे पेट में है, चल जा इते से, और आइंदा कब इते आके हमारी मोड़ियों को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है।
4: नहीं अंकल जी, मैंने कुछ नहीं।
2: और आप सुन लो ए रीना मास्टरनी जी, पिछली बार तो हमने आपकी बात मान ली थी और शांति का स्कूल नहीं छोड़ाया था, लेकिन इस बार हमसे नहीं वाला जियो, वरना हम बहुत कमीने आदमी हैं और स्कूल तो तुम अकेले आते जाते रोजिना देखते ही हो।
0: अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं?
2: हमारे पास टाइम नहीं है अब कोई धमकी देवे को, चलो जाओ सब लोग, ऐसे कोई तमाशा नहीं चल रहा है।
5: चलिए मैम, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है।
0: हाँ चलो।
2: अच्छा मैडम जी नमस्ते, हमारी बिटिया की सगाई में जरूर आइएगा परसों।
5: मैम ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, शांति की सगाई नहीं बल्कि शादी है परसों।
0: सो तो मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे समझाने भर से ये लोग समझ जाएंगे और अपनी बच्ची की शादी कैंसिल करके उसे आगे पढ़ने का अवसर देंगे।
5: तब क्या हम अपने स्कूल की इस इतनी प्यारी स्टूडेंट का भविष्य खराब होते अपनी आंखों देखते रहेंगे मैम?
0: पहले स्कूल चलते हैं, वहाँ जो काम है उसे कंप्लीट कर स्कूल बंद करवाने के बाद हम दोनों चलेंगे।
5: कहाँ मैम?
0: बाल आयोग।
5: बाल आयोग?

0: अरे जे सुद्दी कहाँ मर गई?
1: मैं अकेली कहाँ कहाँ जान दूँ? ये लो अब इन्हें देखे को कायरी शांति अभी तक ऐसी बैठी है, हल्दी लगी? अरे ना नहाई ना सजी धजी, बारात दरवाजे पे आवे वारी है। चल जल्दी जाओ नहा के, फटाफट लहंगा चुनरी पहन ले। तुम्हारी मौसी गजरा माला लेने गई है, अबे आती होंगी बे ही तुम्हें सजाएंगी।
2: मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है।
1: फिर वही बात है, अब ब्याह के दिन हमसे ना पिटो बिन्नू। हाँ चुपचाप जाओ नहा के, तैयार हो जाओ।
0: मम्मी मम्मी वो बाहर, वो
1: अरे छोड़ बाहर, जे तेल ले जाओ और बाहर हलवाई को दिया, वो तो कम पड़ रहा है। और रिंकू को कितने कराई? कही थी ना मैंने कि एक मिनट को भी भैया को इतना ना छोड़ियो। कुछ गाना काय बंद होगा?
0: वही तो बता रही हूँ कि बाहर जीजी की टीचर मैडम आई हैं।
1: अरे शांति नहीं मानी ना तू, हैं तू बुला लाई ना अपने मास्टरनी को? ले ले
2: मम्मी नहीं,
1: हमारे इज्जत को पानी में डाल पे पड़ी हुई है। ले ले
2: ले मम्मी मत मारो।
1: तो मैं बाद में समझूंगी। चल सुद्दी तने दिखा तो मैं मास्टरनियों को ब्याह रुकवाने आई है जो है। चल कायरी सुद्दी, तूने बताओ नहीं कि इतने पुलिस वाले भी साथ में हैं?
3: इंस्पेक्टर मैडम, हमारी आप लोगों से हाथ जोड़े की विनती है कि आप लोग इतने से चले जाओ। हमारी लड़की को ब्याह नहीं है, केवल सगाई है, बारात। हमारे कहवे को मतलब है कि लड़के वाले आते हुए। आप लोगों से बड़ो निवेदन है कि आप लोग इतने से चले जाओ।
4: चुप रहो, तुम क्या बच्चों का खेल समझते हो कानून को? तुमने कह दिया और हम चले जाए? चलो लड़की को बाहर बुलाओ, हम खुद उससे पूछ लेंगे कि शादी है कि सगाई है।
3: मैडम जी लड़की वो अब कहीं गई है।
4: पुलिस को ये पैंतरेबाजी ना दिखाओ, सीधी तरह से लड़की को बाहर लेकर आओ, बुलाओ लड़की को।
3: सुनीता जमोड़ी को ले आ।
1: हाँ अब ही लाते।
5: इंस्पेक्टर मैडम, ये हमारे स्कूल के रिकॉर्ड की कुछ फोटोकॉपीज हैं। इसके अनुसार लड़की की उम्र अभी 12 साल 8 महीने और 26 दिन है। रीना इन्हें कागज दे दो।
6: जी देखिए मैडम, ये यहाँ लिखी है बच्ची की डेट ऑफ बर्थ।
3: मास्टरनी जी, हमने कहा बिगाड़ो है आपको, जो आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर बैठे आ गई।
4: ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हैं, बल्कि तुम्हारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हैं। अरे इतनी छोटी बच्ची की शादी तय करते तुम्हें शर्म नहीं आई?
3: अरे हम कह रहे हैं ना सरकार कि शादी नहीं है, केवल सगाई है, अंगूठी बदलवाई की रसम।
1: लीजिए जे रही मोड़ी, जैसे आप पूछ लो कि सगाई है कि शादी। बोल रही शांति, बता क्या सगाई है तेरी, शादी नहीं?
3: बोल बोल बोल।
2: मैम मैं
7: मोड़ी, बोल कि सगाई है आज केवल।
4: वो तो मुझे समझ में आ ही गया कि आज सगाई है कि शादी है। क्यों बेटा, आज क्या तुम्हारी शादी है? बिल्कुल मत डरो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बताओ बताओ बेटा, सच क्या है?
2: मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ।
1: ना स्मिटी, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूं।
4: ए भाई, वो पुलिस की जीप दिख रही है ना तुझे? अभी चोटी पकड़ के उसमें बिठा दूंगी, चुप बनी रह। बयान हमने दर्ज कर लिया है, तुम दोनों पति पत्नी को थाने चलना होगा। तुम अपनी नाबालिग बेटी की जबरन शादी करवा रहे थे।
3: थानेदारनी मैडम, ऐसा जुल्म ना कीजिए, बारात दरवाजे पे आने वाली है, लड़के वालों को का मुंह दिखाएंगे।
4: कोई बारात नहीं आने वाली है, यहाँ आने से पहले हम वहीं गए थे, उनका लड़का भी नाबालिग है। शादी का निमंत्रण कार्ड भी हमने जब्त कर लिया है और लड़के के पिता और परिजनों से पंचनामे पर सहमति ली है कि वे अपने बेटे के बालिग हो जाने पर ही उसकी शादी करेंगे।
3: शांति, हम तुम्हें मार डालेंगे।
4: नालायक आदमी, शर्म नहीं आती? 2 साल की सजा या 1,00,000 रुपए जुर्माना। नाबालिग की शादी करने के जुर्म में तुम्हें इनमें से कोई भी या दोनों ही सजाएं सुना सकता है कोर्ट, समझे?
5: इनसे तो शर्म की उम्मीद करना ही फिजूल है। इंस्पेक्टर आप तो शांति को अपने साथ ले चलिए, उसे चाइल्ड लाइन के मार्फत किसी अच्छे बाल गृह में भर्ती करवा देने के बाद ही मैं और रीना अपने अपने घर जाएंगी।
0: जी जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी।
4: ये बच्ची कौन है और इसे क्या परेशानी है?
0: मैम मैं शुद्धि हूँ, शांति जी जी की छोटी बहन।
4: तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ रहने में क्या दिक्कत है?
0: वो पापा शराब पीकर मम्मी को मारते हैं, हमें भी पीटते हैं।
2: हाँ मैम, अब शुद्धि को भी साथ ले चलिए।
6: इंस्पेक्टर क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों बच्चियों को ले चले?
5: मैं तो कहती हूँ जरूर ले चलिए, भाई होनहार बच्चियां हैं, पढ़ने लिखने का बेहतर माहौल मिले तो ये जरूर जिले का, प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन कर सकती हैं।
4: पंचनामा बनाना पड़ेगा। पहले सबको थाने चलना होगा, वहां से इन लड़कियों को कोर्ट के मार्फत चाइल्ड लाइन को सौंपा जाएगा।
8: जका हो रहा है, हमारे चीते जी हमारे बच्चे बाल गिरे ना जे, और शांति के पापा इन लोगों को रोको जरा।
7: ये सब तेरी बिटिया का किया धरा है, अब भगत तू, मैं तो जा रहा हूँ।
8: कहाँ जा रहे हो कलारी? दारू पीने।
9: ताने दानी मैडम, सबसे पहले आप जागने को पकड़ लो। हर दिन दारू पीते हैं, बाल बच्चों को मारता पीटता है। जय मारे, हम अपनी बिटियन को जल्दी ब्याह करवाओ चाह रहे थे। ससुराल में इन्हें भरपेट रोटी तो मिला कम से कम।
5: नहीं, रो नहीं शांति की अम्मा। देखो, अभी तुम अपनी बेटियों को जाने दो, इन्हें यहाँ से बेहतर ही हालात मिलेंगे कहीं भी और रहकर। और तुम कल हमारे स्कूल आना, हमसे मिलने।
8: अब हमसे हमारी दोनों मोड़ी तो छीन लें, अब स्कूल बुला के और क्या छीनना चाह रही मास्टरनी जी?
6: अरे सुनो सुनो, स्कूल बुला रही है मैडम तो कुछ भला ही सोचा होगा ना तुम्हारे लिए। और जहाँ तक बच्चियाँ छीनने की बात है तो हमने तुम्हारी बच्चियों की बेहतरी के लिए ही ये किया है। और देखो, ये बात कभी ना कभी तुम्हारी भी समझ में जरूर आएगी।
10: शुद्धि, अरे शुद्धि जल्दी आ।
0: हाँ जीजी।
10: ये देख आज का अखबार।
0: इसमें क्या है जीजी?
10: मेरा रिजल्ट, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है।
0: फर्स्ट?
10: हाँ।
0: सिर्फ फर्स्ट नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट।
10: अरे विमल, तू कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है मैम।
6: अरे ये भला अकेली कैसे आती यहाँ तक? वो तो आज स्कूल आई थी रिजल्ट लेने, तो मेरे साथ यहाँ चली आई
10: मैम।
6: अरे अरे अरे, पैर मत छुओ, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, उल्टा हम उनके पैर छूते हैं। तुमने स्कूल में टॉप किया है, तुम पर हमें बहुत गर्व है
10: मैम।
6: अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो?
10: मम्मी पापा की याद आ रही है।
6: अरे रो नहीं शांति, शुद्धि, अरे पहले देखो तो मेरे पीछे कौन छिपा खड़ा है।
0: मम्मी।
9: ओ हमारी मोड़ियों, हमारे गले लग जाओ, कब से तुम्हारी मम्मी तुम्हें देख बे को तरस रही है।
10: मम्मी। मम्मी, पूरे 2 महीने हो गए हैं और आप या पापा हमें एक बार भी देखने नहीं आए।
9: नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है।
0: शुद्धि, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी हर दिन मेरे घर आती थी, तुम दोनों के लिए रोती रहती थी।
6: हाँ ये सही कह रही है। और पता है तुम्हें हर हफ्ते जो मैं चीजें लाकर देती थी ना, उनमें से ज्यादातर तो तुम्हारी मम्मी की ही भेजी हुई होती थी।
10: लेकिन मम्मी के पैसे तो पापा अपनी शराब के लिए छीन ले जाते हैं।
0: अंकल जी ने शराब पीना छोड़ दिया है।
10: क्या?
9: हाँ बेटा, विमली 16 आने सच कह रही है, तुम्हारे पापा ने दारू पी वो छोड़ दो है। मुझे चमत्कार करो है तुम्हारी दो ही मास्टरनियन ने।
10: मैम आपने पापा की शराब कैसे छुड़वाई?
6: सबसे पहले तो हमने ये किया कि इंस्पेक्टर मैडम से कहकर एक पूरे दिन भर के लिए तुम्हारे पापा को लॉकअप में बंद करवा दिया। हमें लगा कि इससे तुम्हारे पिता की शराब की लत छूट जाएगी। तब तुम्हारी ये मम्मी ही बड़ा रो रही थी और हमें जो बददुआएं दे रही थी, मानो आसमान से फूल झड़ रहे हों।
9: अब क्या करें मास्टरनी जी, पढ़े लिखे तो है नहीं, अपना कछु भला बुरा नहीं समझ में आता। आपने माफ कर दी, ये ही बड़ी बात है।
10: फिर क्या हुआ मैम?
6: फिर हमने तुम्हारे पापा को पुलिस की मदद से नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया।
10: और फिर?
6: फिर क्या, वहाँ पूरे 1 महीने उनका इलाज चला। मैं और प्रिंसिपल मैम कई बार उनसे मिलने गए वहाँ, और जिस दिन वो घर लौटे वो अपने बच्चों के अच्छे पापा बनकर लौटे।
10: अच्छे पापा?
9: बिस्बास करने वाली बात।

0: अब तुम दो ही मोड़ियां घर चलो।
1: घर?
0: मना ना करो बेटा, आओ आओ हमारे गले लग जाओ।
1: मैम,
2: तुम सोच लो, अगर तुम दोनों का मन हो तो तुम अपनी मम्मी के साथ जा सकती हो, लेकिन इसके लिए मुझे पहले यहाँ की इंचार्ज से बात करनी होगी और पुलिस को और कोर्ट को भी तो सूचित करना होगा।
0: मास्टरनी जी, आप जो लिख दोगी बापर हम दो ही पति पत्नी अंगूठा लगा दें। बस हमारी मोड़ियाँ वापस दिलवा दो, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती, हमारी मोड़ियाँ वापस दिलवा दो मास्टरनी जी।
2: हाँ, मगर इस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन बच्चियों की मर्जी क्या है। शांति, शुद्धि,
3: जैसा जीजी कहेंगी मैं वो ही करूंगी।
2: शांति,
4: अगर पापा ने सचमुच शराब पीना छोड़ दिया है और मुझे और शुद्धि को पढ़ने दिया जाएगा तो मैम मैं जरूर अपने घर लौटना चाहूंगी।
2: तुम चिंता नहीं करो बेटा, जिस दिन तुम दोनों को घर से यहाँ लाया गया था उस दिन भी मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटर थी और आज भी हूँ।
4: मैम,
0: तुम्हारी ये सब बातें हम मानेंगे, ना माने तो अब की बार हमें जेल भिजवा देना लाडो, लेकिन घर चलो बेटा, घर चलो।
5: हाँ शांति, अब तुम दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है।
2: ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ की इंचार्ज से बात करती हूँ।
0: अपनी बच्चियों को वापस पा लेने के लिए भले हमें इंचार्ज की आज्ञा चाहिए पड़े, लेकिन मास्टरनी जी, अपनी शांति और शुद्धि को गले लगा के लाने हमें काऊ की आज्ञा की जरूरत नहीं है। आओ आओ बेटी, आ जाओ आ जाओ बेटी।
1: मम्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदिरा दांगी का लिखा नाटक आसमा और भी हैं। भाग लेने वाले कलाकार थे आरोही भट्ट, समृद्धि चौबे, आद्या मुंशी, स्वस्तिका चक्रवर्ती, रविंद्र टाक, विभा श्रीवास्तव, डॉली मल्होत्रा और अनुराधा चतुर्वेदी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक आसमा और भी है, लेखिका इंदिरा दांगी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। अब आप सुनेंगे अशोक नगर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोक नगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज।

0: कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रुपए के प्रति माह के मान से 1,48,200 रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नवविवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मीट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एनपीके और 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है फिल्मी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है गौरव गान की डेढ़ सदी, वंदे मातरम।

श्रोताओं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना 1875 में की थी और इसे आधिकारिक रूप में 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। सन्यासी विद्रोह के दौरान रचित ये उपन्यास भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित भिक्षुओं के एक समूह की कहानी कहता है। इस कथा में पिरोया गया वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसे एक दिव्य माँ के रूप में साकार किया गया है। आध्यात्मिकता और देशभक्ति के इस सम्मिश्रण ने उस चीज को जन्म दिया जिसे अक्सर देशभक्ति का धर्म कहा गया है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। ये देश की एकता, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारतीयों को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। ये गीत राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ये विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिक शक्ति और साझा विरासत को दर्शाता है। आज भी ये नागरिकों में देशभक्ति और कर्तव्य की भावना को प्रेरित करता है। वंदे मातरम की मान्यता भारत का राष्ट्रीय, देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हालांकि संविधान में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, फिर भी 1950 में संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर इसके महत्व को स्वीकार किया और इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान और आदर दिया। संस्कृत निष्ठ बंगाली में रचित वंदे मातरम भक्ति भावों और देशभक्ति की भावनाओं का संगम है। इस गीत का साहित्यिक सौंदर्य भारत की प्राकृतिक समृद्धि और नैतिक भक्ति के साथ नैतिक शक्ति के सजीव चित्रण में निहित है, जो आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद के उस संगम का प्रतीक है जिसने भारतीय पुनर्जागरण को परिभाषित किया।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री ग्वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में

0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। शी चिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
1: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेथ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
2: इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। ज़ेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और UAE के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद ये समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम के आरंभ में श्रोताओं सुनिए फिल्म प्रोफेसर का ये नगमा लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार, युवराज साहू। वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री।

येसुदास की आवाज़ में लीजिए, सुनिए फिल्म चितचोर का नगमा। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। सुनने के ख्वाहिशमंद अली का डब्बाली से बसंत सिंह, चन्न राजकुमार, सुनीता कुलदीप गांधी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, कंवर कॉलोनी बड़वास से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी, मीनू राज श्रीमाली, बिलहरी बड़खीरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, लालू गोलू सोनी, शेख जमील मुन्ना,

बिसरता आदिवासी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता अमृता जोशी, लोकेश जोशी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब सुनिए फिल्म मधुमति का नगमा। बोल शैलेंद्र के हैं, तर्ज बनाई है सलील चौधरी ने। सुनने ख्वाहिशमंद है जतू का, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, हिना कैसर, मोहम्मद वकील, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर, बाबू रियांस ठाकुर, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा सेरे।

मेरे महबूब, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद। अनुरोध हमारे श्रोताओं का है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले, प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले, जयश्री, राजेश, अंजलि खंडाले, कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सोनावड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनावड़े, यंग रेडियो लिसनर्स खोवा मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया।

लीजिए अब सुनिए इंदिवर का लिखा गीत फिल्म पारस से। आवाज सुमन कल्याणपुर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सुनना चाहते हैं गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, ओम प्रकाश, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। इस गीत के लिए खत भेजा है बेमे तरह से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार लक्की।

सुरेश कमलकांत, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, पटेल नगर मलोड से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप बेबी, आरजू जाजोरिया।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हमारे श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, पटेल नगर मलोड से रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू, नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। फिल्म पारस का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुनिए। फिल्म है नूर जहां, शब्द रचना शकील बदायूनी की है, तर्ज बनाई है रोशन ने। फरमाइश आप सबकी।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा से लक्ष्मण रैक्वार, विनीता रैक्वार, लल्लू हल्ले, ऋषि वैशाली वैष्णवी रैक्वार, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन वली डोम, डब्लू डोम, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लक्की रोली, श्वेता और परू।

लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पारस मणि का ये नगमा, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, बोल फारुख कैसर के हैं, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, प्रमिलागंज आलोट रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा।

शिवाजी चौक राजीम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य, कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव।

मोहम्मद रफ़ी को सुनिए। फिल्म है राज हट, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। अनुरोध करने वाले श्रोता मोरटक्का माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति ललित, मनीषा शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस, मन पटेल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज। तीन महुआ खापर खेड़ा रायसेन से तुलसीराम साहू और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। आरती ममता गोमती और इनके परिवार के सदस्य।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनभावन समाप्त होता है, माफ कीजिए, कार्यक्रम सरंगा समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।
1: बोर्ड ने कहा कि टीईटी में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें यह परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देनी होगी। अमूल और मदर डेयरी ने आज से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी व अमूल दूध के टोंड, फुल क्रीम, डबल टोंड, टी स्पेशल और प्रो मिल्क के दामों में इजाफा किया गया है। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से ज़्यादा मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। भोपाल संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। साथ ही कुछ जिलों में लू चलने की भी संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए और आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। इस विषय पर चर्चा करते करते सुनेंगे सुमधुर गीत, लेकिन गीत होंगे आज हमारी पसंद के और बातें होंगी आपकी। तो कॉल कीजिए 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते, मैं शुक्लाल प्रजापत बोल रहा हूँ, निसारपुर से, धार जिला कुक्सी तहसील से।
0: कौन शुक्ला जी, आगे पूरा नाम बताइए।
1: शुक्लाल प्रजापत।
0: सुखलाल
1: हाँ।
0: जी कहाँ से?
1: निसारपुर धार जिले से।
0: धार से तो सुखलाल जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और धार जिले में गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है?
1: गर्मी का मौसम ज्यादा है अभी, गर्मी तो बहुत ज्यादा, जिन्हें ईटे बनाते हैं हम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, क्या 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है।
0: बिल्कुल, और है ना, आपको तो दिन भर का काम रहता है और भरी गर्मी में ही काम करना पड़ता है।
1: हाँ, भरी गर्मी में काम करना पड़ता है और सिर पे टोपी वगैरह बांध के,
0: हाँ जी,
1: कंप्लीट रहना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, काम करिए अपनी शिद्दत से, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप केली का पना पीते रहिए, प्याज खाइए, जिससे आप लू की चपेट में ना आ पाए। हाँ सुखलाल जी, आज का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, बात आपकी, गीत हमारे, और आज का विषय हमने रखा है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए।
1: मुसीबत का सामना मैडम जी धैर्य से करना चाहिए। वो क्या है कि मुसीबत तो आती जाती रहती है, समय निकलता जाता है। इसके लिए क्या है कि थोड़ा धैर्य रख के और थोड़ा सोच समझ के कोई कदम गलत ना होता है।
0: बिल्कुल, जैसे कोई मुसीबत ना आए किसी पर भी, लेकिन यदि आपके यहाँ छोटी मोटी मुसीबत आती है तो आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं या शांति से उसका निराकरण करते हैं?
1: शांति से निराकरण करते हैं। कोरोना काल में आई थी मुसीबत तो,
0: हाँ जी
1: जी, तो क्या है कि धीरे धीरे उससे अपन पार हो तो हो गए हैं। धीरे से शांति से थोड़ा चलोगे तो बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सुखलाल जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, 11 से 12। ठीक है जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी। जी
0: नमस्ते।
1: मैडम नमस्ते। मैं
0: कौन? प्रदीप,
1: सुमित बात कर रहा हूँ, एमपी धार से। सुमित सुमित
0: सुमित। अभी भी हमारे जो पहले कॉलर हैं धार से ही उन्होंने कॉल किया था।
1: अच्छा।
0: चलिए, एक हफ्ते के बाद ही कॉल कर रहे हैं ना आप?
1: नहीं, मुझे सारे नियम मालूम है,
0: अच्छा जी, थैंक यू
1: आप
0: वेरी
1: ना
0: मच।
1: करें। हाँ
0: हाँ
1: जी, हाँ जी।
0: जी,
1: मेरी बात किससे हो रही है?
0: कविता रावत
1: कविता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है, आपसे पहली बार बात हो रही है शायद।
0: जी। हाँ, पहली बार बात हो रही है। सुमित जी, आज का जो विषय है ना, वो ये है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार

0: करना चाहिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि
1: ये
0: जीवन
1: बात।
0: है तो मुसीबतें तो एक न एक आती ही रहती हैं, है ना? तो बताइए आपका इसमें क्या मत है?
1: मेरा मत मैडम इसमें यह है कि जो हमसे बड़े होते हैं या जिनको हमसे ज्यादा समझ होती है, हमें उनके जो तजुर्बे होते हैं, उनके जिंदगी में, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा हुआ होता है और वो जो संघर्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब उनके आसपास होते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखने को मिलता है उसी के आधार पे अगर हम हमारी जिंदगी में अगर कभी इस तरह की कोई भी समस्या आती है और हमें अगर उससे जूझना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा होती है। मेरा अपना खुद का अगर मैं बोलूं तो मेरी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है और बहुत सारी समस्याएं आई मेरी जिंदगी में, उनका सामना मैंने इसी तरीके से किया कि देखा लोगों को कि कैसे वो अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाला उन्होंने। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: दूसरी बात यह है कि कई बार हमें हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो हम अपने उस दौर को कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि जब आपका नाजुक दौर चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उकसाती हैं, जिनसे अगर आप अपना धैर्य खो दें या आप अपने ऊपर संतुलन ना रखें तो निश्चित ही परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही, उनसे और ज्यादा परेशानियों में हम घिरने के चांस बनते हैं,
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, और
1: है
0: आपसे
1: ना?
0: बातचीत करके आपके विचार जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बिल्कुल
1: जी
0: सही आपने अपना मत रखा है इस विषय पर।
1: हाँ, क्योंकि जिंदगी है तो निश्चित ही ये सारी चीजों का आना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैंने एक चीज और देखी है कि जो हिम्मत रखते हैं ना, उनकी
0: हाँ
1: जिंदगी में ये सारे दौर और ज्यादा तेजी से आते हैं। कहीं ना
0: तेजी
1: कहीं
0: से आते
1: ऊपर
0: हैं और
1: वाला या
0: तेजी से
1: पैरों के
0: निकल
1: तले
0: भी
1: वो जो
0: जाते
1: आते
0: हैं।
1: जी,
0: तेजी से आते हैं और तेजी से निकल भी जाते हैं।
1: नहीं वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें उन्हें, उस आदमी को आजमाती हैं और उससे वो
0: हाँ
1: और अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि
0: बिल्कुल।
1: वो हमें, जैसे मुझे अब इस समय ऐसा लगता है कि अब कितनी भी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा भोपाल से लेके धार तक आने का जो सफर रहा
0: हाँ
1: और भोपाल में मैं जो रहा, तो जो मेरा दौर रहा संघर्ष का दौर रहा, तो मुझे पता है कि मुसीबतों का सामना जो होता है वो एक समय रहते हैं, मगर सूझबूझ से कर लें तो निश्चित ही आप उसका कहीं ना कहीं फिर आगे जाके फायदा तो मिलता ही है।
0: बिल्कुल। चलिए धन्यवाद बहुत अच्छी बातें करने के लिए। नमस्कार।
1: जी जी मैडम, नमस्ते आप।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हैं। आप कौन हैं?
0: मैं कविता रावत हूँ, आप कौन हैं?
1: मैं भावना यादव हूँ, काली चौक सिवनी से, मध्य
0: कहाँ
1: प्रदेश।
0: से?
1: काली चौक सिवनी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, सिवनी, मध्य प्रदेश से।
1: जी,
0: और भावना जी, क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ को भी बहुत काम होते हैं।
1: जी,
0: अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा।
1: मैम बहुत काम होता है, सुबह से शाम तक, रात
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: से 12 बजे तक।
0: सही बात है, नॉन स्टॉप
1: जी,
0: विदाउट पे।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। अच्छा भावना जी, आज के विषय पर हम आते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा है बात आपकी, गीत हमारे, और विषय है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, हम उसका सामना कैसे करते हैं।
1: मुसीबत आने पर तो मुसीबत अपने ही को मुसीबत झेलना पड़ता है।
0: झेलना तो
1: धैर्य
0: पड़ता है।
1: रखना, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य।
0: आप रखती हैं?
1: जी मैम, रखती हूँ
0: तो शांति के साथ ही आप अपनी हर मुसीबत को टाल पाती
1: मैं।
0: हैं।
1: कभी कभी तो गुस्सा आता है, लेकिन कभी उससे से कुछ नहीं होता। शांति शांति काम करना चाहिए।
0: हाँ, इस बात को तो आप मानती होंगी कि है ना, हम अगर घबरा जाते हैं तो और हमारी मुसीबत, हमारी
1: बढ़
0: परेशानियां
1: जाती है,
0: बढ़ जाती
1: बढ़।
0: हैं, है ना। तो जितना हम धैर्य रखेंगे, शांति से उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्दी उसके निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं।
1: जी
0: चलिए भावना जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और एक हफ्ते
1: मैम,
0: बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ एक हफ्ते बाद ही कॉल किया होगा आपने।
1: मेरा 3 महीने बाद लगा था।
0: अरे चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले हफ्ते लगा सकती हैं।
1: जी जी जी
0: ठीक है,
1: जी
0: थैंक
1: थैंक यू
0: यू
1: मैम,
0: वेरी
1: नमस्ते।
0: मच,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: शुभ नाम आपका?
1: जी। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े बोल रहा हूँ।
0: मनीष निमाड़े। शायद आप
1: हाँ जी,
0: लेटर भी लिखते थे क्या कभी?
1: बहुत
0: है
1: कभी नहीं, अभी भी
0: ना?
1: जारी है। और कम से
0: वही,
1: कम
0: क्योंकि है ना, लेटर्स पढ़ने में आपका नाम पढ़ने में आया है कई बार, इसीलिए मुझे
1: नहीं,
0: एकदम से एक क्लिक हुआ।
1: चलिए धन्यवाद कि इस पत्रों की महत्ता के कारण हम कहीं तो याद हैं।
0: नहीं, बहुत बहुत वैल्यू है हमारे श्रोताओं की, ऐसी बात
1: नहीं,
0: नहीं है।
1: वैल्यू तो खैर वो एक याद होना अलग बात है और श्रोता
0: सही
1: का
0: बात
1: अपना
0: है।
1: वो होता है। और आज भी ईश्वर की कृपा से मेरी टेबल पर करीबन 300 350 पोस्ट कार्ड आज भी रखे हैं।
0: अरे, तो वो आपने पोस्ट नहीं किए क्या? अच्छा
1: नहीं, लिख के नहीं रखे मैडम, लिखते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं,
0: अच्छा अच्छा ऐसे ही ब्लैंक लाकर
1: मतलब
0: रखे हुए हैं आपने?
1: ब्लैंक लाके रखे हुए रहते हैं। और नित्य का काम है, जैसे खाना जरूरी है ऐसे दो चार पत्र लिखना जरूरी है।
0: भाई, लेकिन है ना, हमारे इन श्रोताओं की वजह से आज भी हमारी पुरानी परंपरा जिंदा है
1: जी,
0: ना। चलिए,
1: हाँ
0: बहुत
1: फिर भी
0: बहुत
1: चल रहा
0: आभार।
1: है तो श्रोताओं के कारण है। और कुछ ऐसे हैं जो आज पोस्ट कार्ड जिंदा है, नहीं तो बेचारे
0: सही बात है।
1: सबके खत्म हो गए होते।
0: अच्छा मनीष जी, आज के विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करें
1: जी
0: कि मुसीबतों का सामना आप किस प्रकार करते हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए।
1: जी, मुसीबतें देखिए, मनुष्य जीवन है और मुसीबतें कठिनाई परेशानियां आती रहेंगी, और इसके लिए इनका सामना करने के लिए अगर आप हम किसी बड़े परिवार में रहे हैं, या हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे साथ हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी मामा मामी ये अगर साथ रहे तो हमको उन्होंने बचपन में ही ठोक ठोक के सिखा दिया है कि हम छोटी मोटी मुसीबतों का कैसे सामना करेंगे, कैसे पार पाएंगे। और जब मुसीबतें बड़ी आती हैं तब वो लोग भी साथ होते हैं, और हम लोग जो है परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले तो हम ईश्वर और उसका धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने कष्ट दिया है तो इसको सहन करने की या पार पाने की हमको धैर्यता भी दी है, थोड़ा संयम से हम उसको काम लें और रास्ते सूझते जाते हैं और हम पार पाते जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये
1: जी
0: बातचीत आप कल के प्रोग्राम में 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकेंगे
1: जी
0: मनीष
1: वो
0: जी।
1: जी, वो क्या
0: जी
1: होता है, एक कहावत है कि
0: हाँ जी।
1: आफत के झाड़ पर मुसीबत के फल जब लग जाते हैं तो मनुष्य को तपती धूप नहीं देखना चाहिए, दूर पड़ रही छोटी सी छांव को देखकर भी मन में चिंतन करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, मन खुश कर दिया। धन्यवाद कॉल करने
1: जी
0: के
1: जी
0: लिए।
1: ओके जी, थैंक यू थैंक यू।
0: जी।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते दीदी
0: नमस्ते जी।
1: जी
0: आवाज आपकी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है।
1: जी जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: जी मैडम जी, हम ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से जगत सिंह चड़ार बोल रहा है दीदी जी।
0: जगत सिंह जी, आप तो बहुत कॉल करते हैं और आपके कॉल लग भी जाते हैं,
1: जी
0: है ना। अच्छा जगत सिंह जी, ये एक हफ्ते के बीच में तो नहीं लगा आपका कॉल?
1: नहीं जी, होगा 22-24 दिन होगा है।
0: चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है ना, अगर आप इस बीच में लगा होगा ना कॉल, तो अपनी बातचीत अगर मैं कर भी लूंगी तो मुझे फिर वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक
1: हाँ
0: हफ्ते के
1: वो तो
0: बीच में।
1: क्या है कि उसे सभी लोगों की देखने पड़ती है कब कौन सा
0: सही
1: लगा
0: बात
1: है।
0: है, वही तो, हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसको रिकॉर्डिंग के रूप में बनाया
1: नहीं
0: जाए।
1: अच्छा किया, जो तो हमें कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया ये तो।
0: अच्छा जगत सिंह जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: देखो मुसीबत आ जाएगी तो वो तो अच्छे से निकालो, जैसे अच्छे से समय निकलता है ऐसे मुसीबत को भी काटो समय।
0: आपके साथ ऐसा होता है क्या, आप बिल्कुल आराम से सुकून से हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं, या थोड़े से घबरा जाते हैं?
1: जी मैडम जी, हमें तो ईश्वर ने ऐसा ही बनाओ है कि मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि पैरों से भी नहीं चल पाती तो मुसीबत चलने में भी होती है,
0: ओहो हाँ, सही
1: और
0: बात है।
1: देख भी नहीं पाती तो देखने की भी समस्या मन में सोचते हैं यार, के ऐसा हम भी देखते।
0: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा धैर्यवान तो कोई होगा ही नहीं,
1: जी
0: है ना। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आप खुश हैं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं।
1: ये अपन जा सोचते, अब भगवान ने जैसा किया तो ठीक किया, अब उसको क्या, भगवान ही जाने जो कुछ हुए।
0: चलिए कोई बात नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है जगत सिंह जी?
1: जी हमारे परिवार में, हमारा परिवार बड़ा है, 5 भाई हम लोग
0: अच्छा।
1: और सभी लोग हैं।
0: चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दूसरे श्रोता भी जो आपकी बातें सुनेंगे ना, तो निश्चित रूप से उन्हें ये सबक मिलेगा कि छोटी मोटी मुसीबतों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जब लोग
1: जी
0: बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से झेल जाते हैं,
1: जी जी
0: है ना। चलिए
1: जी
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, कल आप
1: ये
0: अपना
1: बोल
0: प्रोग्राम
1: मैडम जी,
0: सुनिएगा।
1: ये बोल रहे हैं, एक दो नाम ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: रानू दीदी, रानू
0: हाँ
1: दीदी और विपिन भाई साहब, विपिन कटारे गौर झामर से,
0: अच्छा।
1: और रानू दीदी हैं देवास से।
0: बिल्कुल हम जानते हैं,
1: जी उनको अभी कॉल अभी बहुत दिन से नहीं सुना मैंने।
0: मैंने भी नहीं सुना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कॉल आए उनका।
1: जी
0: चलिए जगत सिंह जी, धन्यवाद,
1: जी नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोगा, उत्तर प्रदेश से बात करता हूँ बहन जी।
0: सूरज कुमार सैनी?
1: नहीं, सुरेश कुमार सैनी
0: सुरेश कुमार।
1: जी,
0: अच्छा, कहाँ से? महोबा से।
1: महोबा जिला से। बस
0: जी कैसे हैं सुरेश जी?
1: एकदम अच्छे हैं।
0: और क्या करते हैं आप काम?
1: जी मैं काम तो करता हूँ बहन जी, खेती किसानी भी है अपने पास
0: हाँ जी।
1: और फूलों का डेकोरेशन का भी काम है। और इस वक्त जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय अभी सिलाई कर रहा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ।
0: अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड हैं आप
1: जी।
0: तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि इतना सारा काम आप करते हैं।
1: जी
0: सुरेश जी, बताइए कि आज का विषय है हमारा कि मुसीबतों से हमें, मतलब मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: मुसीबतों से घबराने नहीं चाहिए
0: जैसे यदि आपके घर में बच्चे हैं, उनके कहीं
1: कभी।
0: कोई नंबर कम आते हैं या कुछ है ना, प्रॉब्लम आ जाती है, परीक्षा दोबारा से देनी होती है, तो वो बच्चे घबराते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं?
1: घबराने वाली बात नहीं है, फिर से प्रयास कीजिए। हाँ
0: शांति से आप बच्चों को डील करते हैं या थोड़ा
1: जी,
0: गुस्सा
1: बिल्कुल
0: हो
1: शांति
0: जाते
1: से डील
0: हैं?
1: करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको चार झपट के मारा पीटा जाए, उसमें फिर और बच्चा बिगड़ता।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे बाकी श्रोता भी आपकी बारे में जानकर बड़े खुश होंगे और उन्हें एक नया आइडिया भी मिलेगा।
1: जी।
0: चलिए, धन्यवाद सुरेश
1: नमस्कार
0: कुमार
1: जी,
0: जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हमको गाना सुनना है।
0: हाँ, गाना तो आपको सुनाएंगे हम, लेकिन अपनी पसंद का सुनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम है बात आपकी, गीत हमारे।
1: ऐसा
0: हाँ,
1: है, बुधवार के दिन आते थे ना, फोन कर गीत सुने। अब
0: बुधवार को
1: कहाँ
0: फोन
1: फोन कर
0: करें गीत
1: लिया।
0: सुने, आज 11 बजे से आएगा, लेकिन जो कल प्रोग्राम आने वाला है उसे हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: अच्छा, ये
0: ऐसा
1: कल
0: है,
1: हुआ, कल आएगा जी गाना।
0: ये वाला गाना कल आएगा, लेकिन गाना आज हमारी पसंद का होगा। आप तो आज हमसे बात करिए, विषय है मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं।
1: मुसीबत का सामना मैम करना पड़ता है। अकेले रहते तो सभी काम करना पड़ता है
0: अरे,
1: ना।
0: आप अपना नाम तो बताइए और कहाँ रहती हैं ये बताइए।
1: हम होशंगाबाद जिला से बोल रहे, नर्मदापुरा, छोटू
0: कौन?
1: मीना
0: छोटू मीना।
1: जी। बहुत दिन में कॉल लगा आपके, तुम्हारे पास
0: आप करते क्या हैं?
1: कुछ नहीं कहते मैम, हम तो बिकना है।

0: कविता, कविता दीदी बोल रहे हैं।
1: कविता दीदी, आए बाबा, कविता दीदी, बहुत दिन बाद वही आपसे।
0: हाँ, बहुत दिन बाद बात हो रही है ना। और आपकी क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है मैम, कॉल लगाते हम, तुम्हारा कॉल लगता नहीं है।
0: अच्छा,
1: आदमी की पेशन की लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लगता नहीं है।
0: चलो, लेकिन आप है ना छोटू जी, इतनी मुसीबतों के बावजूद रेडियो से भी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, रेडियो हमारी जान है।
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते, तुम्हारे जो प्रोग्राम देते हैं ना,
0: हाँ हाँ,
1: वो बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातों भी बहुत अच्छी लगती।
0: चलो, कुछ तो अच्छा लगता है आपको। अच्छा, ये बताइए कि अब आप है ना जैसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उस परिस्थिति में आप घबराते हैं या शांत मन से चलता है आपका काम, धैर्य रखे रहते हैं या घबराते हैं?
1: कौन, हम
0: हाँ,
1: घबराते क्यों, हम
0: नहीं घबराते?
1: नहीं, हम नहीं घबराते मैम।
0: अच्छा, चलिए, ये बहुत
1: आज
0: अच्छी बात
1: तुम्हारी
0: है।
1: ड्यूटी लगी है?
0: आज हमारी ड्यूटी है।
1: अच्छा, तो हमारा गाना बता दे, कल कल बता देना।
0: अच्छा, बता दीजिए। वैसे आज है ना हम जो गा से बात करेंगे, और गाने हम लोगों की पसंद के होते हैं, कल सुन लेना 11 बजे से, आज तो ये
1: कल
0: प्रोग्राम
1: ग्यारह
0: नहीं है।
1: बजे सुना दीजिए।
0: ठीक है, चलिए, ओके ओके।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि टीईटी में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें यह परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता हैं राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल।

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीतकार रजिंद्र कृष्ण, संगीतकार आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश रेलवे कॉलोनी बठिंडा से आई है। श्रोता है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। अगली चिट्ठी मलकापुर महाराष्ट्र से आई है। श्रोता है शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। गीत लिखा शकील बदायूं ने, संगीतकार हेमंत कुमार। इस गीत के लिए फरमाइश सनावत से आई है, श्रोता है।

सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादा। अगली श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शिकार से। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है बीड शहर से, महाराष्ट्र। श्रोता हैं प्रकाश, पराग, प्रदीप और केशव। अगले श्रोता खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया गीत को कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगले श्रोता झालावाड़ से हैं, हर्षिता, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर और प्रभुलाल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसेट दिखा, नई कहानी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग।

0: Gen Z भी है, है also Gen old, नहीं पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: जनहित में जारी एक सूचना, भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल, मध्य प्रदेश। सूचना समाप्त हुई।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ब्रह्मा विष्णु शिव आदि 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ अष्टवसु नवग्रह चाणक्य आदि राजनीति वेत्ताओं को नमन। सभी गुणीजन एवं सुधीजन को मेरा प्रणाम। मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूं। वैसे मैं चाहूं तो बहुत कुछ सुना सकती हूं, परंतु रामायण या महाभारत की कथाओं का तो कई बार गायन कर चुकी हूं, इसलिए आज सोचती हूं कि क्यों ना पंचतंत्र से कुछ सुनाऊं। पंचतंत्र, क्योंकि किंवदंतियां कहती हैं कि पंचतंत्र का नीति शास्त्र अद्भुत है। इस शास्त्र का जो निरंतर अध्ययन करता है इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकते। अथ श्री पंचतंत्रम कथा। सुधीजन, दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहां के राजा अमरशक्ति कल्प वृक्ष के समान उदार, प्रजा का संपूर्ण ध्यान रखने वाले एवं सभी कलाओं में निपुण थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। परंतु तीनों ही पिता के विपरीत अत्यंत अज्ञानी, अविवेकी एवं वाचाल थे। महाराज अमरशक्ति को यह दुख खाए जा रहा था।
1: हे ईश्वर, मुझे आपने सारे सुख दिए हैं, मेरा राज्य चारों ओर से सुरक्षित है, मेरी प्रजा सुखपूर्वक है, परंतु प्रभु मेरे पश्चात मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? सच है, रूपवान, धनवान एवं भाग्यवान होने पर भी मूर्ख पुत्र का जन्म लेना माता के गर्भ को अपमानित करता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ये ठीक रहेगा, कल मैं सभासदों से इस विषय में चर्चा करूंगा।
2: महिला रोप्य नगर के महाराज राजा अमरशक्ति

0: सब अपना आसन ग्रहण करें।
1: क्षमा चाहता हूँ महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपकी सभा में 500 से अधिक विद्वान उपस्थित हैं, उसके पश्चात भी।
2: महामंत्री सुमति, मैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर अत्यंत व्याकुल हूँ।
1: मेरा निवेदन है महाराज कि पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान एवं अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं, राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में भेज देना चाहिए।
2: मैं आशा करता हूँ पंडित विष्णु शर्मा मेरे पुत्रों को अतिशीघ्र ही शिक्षित बना देंगे, परंतु क्या वे मेरे पुत्रों का दायित्व लेंगे?
1: शुभ कार्य में देर किस बात की महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत उन्हें आपके समक्ष उपस्थित होने का निवेदन करूं।
2: जैसा आप उचित समझें।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा आपके सामने उपस्थित होने की इच्छा रखते हैं।
2: उन्हें ससम्मान सभा में ले आए।
1: जो आज्ञा।
3: प्रणाम महाराज, मैं वेदों के अध्ययन में लीन था, तभी सूचना मिली कि महाराज मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं। आज्ञा करें महाराज, एक दरिद्र शिक्षक आपके राजकीय कार्य में आपकी क्या सेवा कर सकता है?
2: हे विद्वान, मुझ पर अनुग्रह करके यदि आप मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत कर सकें, तो मैं आपको 100 गांव का अधिकार दूंगा।
3: क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु 100 गांवों का आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूंगा। अधिक क्या कहूं, परंतु आपके पुत्रों को शिक्षित करने में मैं स्वयं भी आनंद की प्राप्ति करूंगा। मैं अर्थलोलुप नहीं हूं, इंद्रिय सुखों से भी विरक्त हो चुका हूं। आप आज की तिथि अंकित कर लें, मैं पंडित विष्णु शर्मा आज ये सिंह घोषणा करता हूं कि आज से 6 मास के अंदर यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना दिया, तो आप मुझे मृत्यु दंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं।
2: हे देव, आपको कदाचित ये अनुभव नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का क्षण भर में ही समाधान कर दिया। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि मेरे पुत्र बड़े ही।
3: बस महाराज, बस। आज से ये आपकी चिंता मेरी चिंता है। आज पूनम की रात है, आज से ठीक 6 मास बाद आपके तीनों विद्वान पुत्रों को साथ लेकर ही मैं आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा महाराज।
4: मंत्रियों सहित महाराज भी विष्णु शर्मा की उस कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर चकित हो गए तथा राजपुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा की सेवा में सौंप कर निश्चिंत हो गए। उधर विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र के 5 प्रकरण बनाए, जिनका नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक थे, जिन्हें छोटी छोटी कहानियों से तैयार किया गया था। कहते हैं इन 5 प्रकरणों ने 6 मास में ही राजपुत्रों को अद्वितीय विद्वान बना दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मित्रभेद से प्रारंभ किया। वर्धमानो महान स्नेह
3: सिंहगो वृषयोर वने पिशुनेना कि लुप्तेन जंबुकेन विनाशिता। एक नगर में वर्धमान नामक एक वैश्य रहता था। वो बहुत ही धनी था। उसने अपने सदुपायों से प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली थी। अंततः उसने धन का कहीं निवेश करने का सोचा।
5: उफ, नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं, धन को कहां लगाऊं? मेरे पास जो धन है उसका कहीं सदुपयोग तो करना चाहिए ना, पर करूं क्या? सत्य है कि धनवान व्यक्ति की गणना उत्तम पुरुषों में होती है। धनिकों के शत्रु भी उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उनके प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। इस सोचा विचारी में नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं क्या करूं? विद्वान कह गए हैं धनोपार्जन के तो 6 तरीके हैं, सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। नौकरी? हाँ, नौकरी से तो सेवा का उचित मूल्य नहीं मिलता और साथ ही ऊंचे पद वालों की डांट भी सहनी पड़ती है। तब खेती? ये तो अत्यंत ही कष्टदायक है। ना बाबा ना, खेती बिल्कुल ना। तब फिर क्या?
6: एक उपाय है भैया, ब्याज पर पैसे चलाना।
5: ब्याज से पैसे चलाना? ना बाबा ना, ब्याज से पैसे चलाने वालों को भी धन डूबने का भय रहता है।

0: भिक्षावृत्ति भी कपटी लोगों के कारण निंदनीय हो चुकी है।
1: तब व्यापार?
0: हाँ हाँ, व्यापार ही सबसे उत्तम है भैया,
1: यही ठीक रहेगा। हाँ।
0: मैं कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर व्यापार के लिए चल पड़ूंगा। अब आएगी

0: सासुमा।
1: ओ
0: सारी तैयारियां हो गई रे।
1: ओ
0: अरे मौसम भी अनुकूल है, हमें आज ही रवाना होना है।
2: अरे भाई वर्धमान,
0: भैया
2: कहाँ की तैयारी है?
0: ये साधु मल जी आइए आइए। भैया शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, जाने से पहले आप सबसे मिलना चाह रहा था। चलो भैया आप आ गए।
2: अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो इसी बहाने आपके दोनों बैल संजीवक और नंदक भी शहर घुमाएंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया, बचपन से ही उन्हें हमने पाला है, उनके बिना जी भी तो नहीं लगता हमारा। अच्छा भैया चलते हैं। नमस्कार भैया।
2: नमस्कार।
0: चलो चलो साथ हुआ। संभल के संभल के संभल के संभल के। ये सातवा, अरे देख तो कितनी धूप चढ़ाई रे। बैल भी थक गए होंगे और बाकी सारे साथियों को भी भूख लग रही होगी। क्या करें रे,
3: क्या करें फिर?
0: वो देख देख देख, अरे जमुना नदी आ गई। चलें जमुना किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और तब तक संजीवक और नंदक भी चराएंगे और विश्राम कर लेंगे।
3: तुझे ये बात तो हम कह रहे हैं।
0: जी कह रहे का?
3: हाँ सेठ जी, जे आपने बहुत अच्छा किया। वो क्या कहते हैं, हम सभी थक गए थे ना, आराम की तो सोच रहे थे, तो हम कहते कि आप भी तनिक विश्राम कर लो सेठ जी।
0: यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अरे जाओ रे जाओ, ए संजीवक नंदक जाओ चराओ जाके। ए सासुआ चला पेड़ की छाता ले आ जा।
3: चलो।
0: ये सासुआ देख तो, ये संजीवक आज कितनी मस्ती कर रहा है।
3: अरे बहुत मस्ती कर रहा है।
0: अरे अरे अरे, अरे ये तो जमुना नदी के किनारे जा रहा है। ए संजीवक, ए संजीवक जमुना किनारे ज्यादा मत जा रहे, अरे आगे दलदल है।
3: ए संजीवक,
0: ये सुन रहे तुम निकल ही नहीं रहे भैया।
3: क्या करें,
0: डर लग गया। संजीवक को निकालने की जुगत ही नहीं हो रही, अब क्या होगा?
3: यही बात तो हम कहते सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
3: अरे यही कि आप कब तक यहाँ रुकोगे? अरे अंधेरा होवे को आया है।
0: क्या
3: अंधेरा? कहते थे कि एक बैल के कारण आपके साथ ही कहीं शेर चीते के हाथ लग गए तो।
0: शेर चीते? अरे भैया, अरे पर सारथवा, अरे सारथवा, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भैया? देख तो वो कितना अस्वस्थ दिख रहा है।
3: जी बात तो हम कह रहे सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
3: अरे आपको शायद ये ज्ञान नहीं है, ये जंगल में ना डाकुअन का भी बड़ा आतंक है।
0: अरे क्या कह रहे डाकू?
3: अरे डाकू डाकू
0: भैया,
3: कहते कि ईश्वर ना करे अगर कुछ।
0: अरे चुप चुप। अरे भैया अंधेरा भी, शेर चीते भी, डाकू भी। तुम शायद ठीक कहते हो, परंतु संजीवक को?
3: अरे यही बात तो है। आप तो निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ रुकत है। और संजीवक को निकाले का

0: जुगत करत है,
1: है?
0: और जाके उबरते ही हम जाको लेके शहर आ जाएंगे। बस
1: पक्को पक्को
0: पक्को आप तो जाओ।
1: ठीक है भैया, हम निकल ले, यही ठीक रहेगा। चलो भैया चलो आगे बढ़ो। भैया संजीव को लेके आ जाना।
0: अरे हम जरूर आ जाएंगे संजीव को लेके।
1: भैया
0: आ जाओ,
1: जा रहे हैं साथ में।
0: जाओ
1: संजीव को लेके आना भैया।

0: और फिर सेठ जी संजीवक को छोड़कर चल दिए। कहते हैं समझदार लोग छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज का नुकसान नहीं करते। उधर सारथवाह भी एक पेड़ की डाली पर सो गया और रात बीतने लगी।
1: सवेरा हुए को आया, देखें तो संजीवक की का दशा है। अरे अरे, हमें तो लगता ही नहीं कि ये कभी निकल पाएगा। तो हम कितने दिन तक जाके लिए प्रतीक्षा करें? अरे ये तो वैसे ही मर जाएगा, यही बात तो हम कह रहे हैं। हैं? हम काहे जाके लिए अपनी जान को विपदा में डालें? हाँ, हम तो जाको इधर ही छोड़ के चले चलते।
0: सारथवार ने शहर जाकर वर्धमान को संजीवक की मृत्यु का झूठा समाचार दे दिया। दुखी मन से वर्धमान ने उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया। परंतु इधर की कहानी तो कुछ और ही थी। आयु शेष होने के कारण संजीवक बच निकला। यमुना जल से मिश्रित वायु एवं सुनहरी घास को खाकर वो काफी हृष्टपुष्ट हो गया। पूरे जंगल में हुंकारता फिरता था। एक बार उस जंगल में पिंगलक नामक शेर अपने साथियों सहित यमुना में अपनी प्यास बुझाने आया।

0: ये किसकी हुंकार है भाई? मेरे तो सारे शरीर में कंपन होने लगा। नहीं नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, अवश्य ही विदेश से आया है। बाप रे बाप, अपने प्राण बचाओ। अरे करकट, तमनक
1: जी महाराज,
0: शीघ्र ही सभी सामंत गणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे आ जाओ।
1: जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज आप चलें, हम सभी को लेकर आते हैं। भाई दमनक, सभी को ले चलो यहाँ से। हाँ क्यों दमनक, हम सियार हैं तो क्या? हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं? जब सिंह राजा ने हमें मंत्री पद से हटा ही दिया तो क्यों हम राजा की सहायता करें?
2: परंतु हमारे स्वामी पिंगलक आज भयभीत, मैं उनके भय का सही कारण जानकर उपाय सोचूंगा।
1: आपने कैसे जाना कि स्वामी भयभीत है?
2: इसमें जानने की क्या बात है, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही बातों को समझ लेते हैं।
1: अच्छा, आप कैसे महाराज को अपने वश में करेंगे?
2: अरे करकट देखो, राजा के प्रति एक सेवक का क्या कर्तव्य होता है
1: बताओ?
2: मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: सच कहते हैं, सागर और पर्वत की परिधियां ज्ञात हो सकती हैं, पर मनुष्य का मन ना बाबा ना। तो सुधीजन, अब दमनक तो पिंगलक के पास चला।
2: महाराज को दास का प्रणाम। एक निवेदन है महाराज, आप पानी पीने गए और बिना जल ग्रहण किए ही लौटकर इस प्रकार क्यों बैठ गए?
0: दमनक, दूर से आ रही उस ध्वनि को सुन रहे हो? जान पड़ता है कोई अद्भुत जीव आ गया है। आवाज से लगता है कोई पराक्रमी होगा।
2: क्षमा करें महाराज, परंतु सिर्फ आवाज को सुनकर इस प्रकार भयभीत होना उचित नहीं। कहते हैं अत्यंत बलवान और भयप्रद शत्रु के

0: मैं जाकर आवाज के वास्तविक कारण को समझ कर आता हूँ। मेरे लौटने के बाद ही आप जैसा उचित समझे कीजिएगा।
1: यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
0: जैसी आज्ञा महाराज।
1: मैंने दमनक पर विश्वास करके क्या ठीक किया? कहीं मंत्री पद से हटाए जाने का बदला तो नहीं ले रहा? मेरे शत्रु को लाकर मुझे मारने की इच्छा तो नहीं रखता? नहीं नहीं, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर छुप जाता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा।
0: महाराज ने मुझ पर बहुत भरोसा किया। अब मैं करकट को बताऊंगा कि वास्तविक सेवा वृत्ति क्या होती है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे, झाड़ियों के पीछे ये कौन है? ये तो एक बैल है। वाह वाह, भगवान की कृपा से ये बड़ा अच्छा हुआ। इस बैल की हमारे महाराज सिंह से मित्रता करवाकर पुनः शत्रुता करवाऊंगा। और संधि विग्रह की इस नीति से पिंगलक को अपने वश में कर लूंगा। अरे दुष्ट बैल, इधर आओ। अरे महाराज, पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं। इस वन प्रांत में व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हो?
2: भद्र, ये पिंगलक कौन है?
0: अरे, तुम महाराज पिंगलक को नहीं जानते? वे इस वन के स्वामी सिंह हैं, तुम्हें अभी बुला रहे हैं।
2: हे भद्र, आप बड़े ही उदार एवं सज्जन लग रहे हैं। यदि आप मुझे वहां ले चलना ही चाहते हैं तो महाराज से मुझे अभयदान दिलवाने की कृपा कीजिएगा।
0: हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं जाकर देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप तब तक यहीं बैठे रहिए।

0: महाराज की जय हो।
1: क्या सूचना लाए हो दमनक?
0: महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस आवाज का पीछा किया। वो कोई सामान्य जीव नहीं है, भगवान शंकर का वाहन महावृषभ नंदी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर ने उसे संपूर्ण वन में स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दी है।
1: तभी मैं सोचूं, एक तृणभोजी पशु इस भयंकर वन में निडर होकर कैसे घूम रहा है। वैसे दमनक, तुमने उससे क्या कहा?
0: हे स्वामी, मैंने भी उससे कह दिया कि ये वन चंडिका के वाहन सिंहराज पिंगलक का है, अतः आप हमारे अतिथि हैं। मैं स्वामी पिंगलक की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। कृपया चलकर जलपान ग्रहण करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आनंद पूर्वक विहार करें।
1: वाह मंत्री श्रेष्ठ दमनक, ऐसा लगता है आपने मेरे मन की बात कह दी। जाएं और शीघ्र ही उन्हें आदर पूर्वक ले आए।
0: जी महाराज, जाता हूं।
2: हाँ आओ दमनक भाई, क्या कहा महाराज ने? क्या उन्होंने मुझे अभय दान दिया?
0: अभय दान की क्या बात करते हो? मैं महाराज से कुछ कहूं और वो टाल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप निर्भय होकर उनके पास चले, वहां मित्रता पूर्वक रहेंगे। परंतु मित्रता के मद में मुझे भूल मत जाए, नहीं तो आपकी दशा दंतिल सेठ के समान हो जाएगी।
2: अम्मा, ये दंतिल सेठ कौन है भाई?
3: उस दुष्ट दमनक ने कैसे अपना खेल शुरू कर दिया, पिंगलक के सामने भी अपने को श्रेष्ठ साबित कर लिया और संजीवक को भी मुट्ठी

में कर लिया। उसने संजीवक को दंतिल की कथा सुनाई, परंतु हम ये कथा सुनेंगे पंचतंत्र की अगली कड़ी में, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की पहली कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है। इसमें ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य साथ ही भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा TET को लेकर फैसले में कहा है कि जो भी छूट दी जानी थी वे पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें TET परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को TET परीक्षा देना होगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत एस भोंडवे ने कहा है कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

श्रोता बहनों नमस्कार। कार्यक्रम महिला सभा की आज की कड़ी में आपके साथ हूं मैं, आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों, इस समय हम सभी गर्मी की लंबी दोपहरी में आलस का अनुभव कर रहे हैं, यानी हम गृहिणियों के पास काम तो बहुत है पर करने का मन नहीं हो रहा, शरीर में आलस है। पर बहनों, ये तो आप भी जानती हैं ना कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आज हम थोड़ा आराम का लालच छोड़कर अपने बेहद ज़रूरी कामों को करते चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी हमें ज़रूर मिलेंगे। बहनों, श्रम यानी मेहनत, वो मेहनत जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो हमारे सपनों को साकार करने का रास्ता बनाती है। सच तो यह है बहनों कि बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी का कड़ा परिश्रम जरूर होता है। श्रम हमें सफलता ही नहीं देता बल्कि हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी सिखाता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें अपने काम की कद्र भी होती है और यही भावना हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। बहनों, हम अगर अपने आसपास देखें तो हर जगह श्रम का महत्व हमें साफ नज़र आता है। एक किसान खेत में मेहनत करता है तब कहीं हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। एक मजदूर दिन रात परिश्रम करता है तब कहीं जाकर एक इमारत खड़ी होती है। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जब बच्चे लगातार मेहनत से पढ़ाई करते हैं तब कहीं जाकर उन्हें सफलता मिलती है।

0: बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता लेकर आए हैं, जिसका कि हमें और आपको सभी को अगर हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि बहनों, हमारे पास आमदनी कितनी है, उसे हम किस तरह से कहाँ निवेश करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, अगर इन सब की समझ हमारे अंदर अच्छी तरह से आ जाए तो हम अपने जीवन को थोड़ा सा बहुत आरामदायक तरीके से बिता सकते हैं। तो बस हमारी आज की वार्ता का विषय है घरेलू बजट प्रबंधन। वार्ताकार हैं श्रीमती संध्या अग्रवाल। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज हो या कल, चाहे वो बीता हुआ हो, आने वाला

अल्लाह, हम सभी अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपनी प्रत्येक माह की आय अथवा कमाई को विभिन्न घरेलू मदों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य कई आकस्मिक मदों पर अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च अथवा व्यय कर इसी आय की सीमा को ध्यान में रखते हुए एक परिवार में अमुक माह में किस मद पर कितना संभावित खर्च अथवा व्यय करना होगा उसका एक अनुमानित ब्यौरा अथवा विवरण तैयार किया जाता है, जिसे हम घरेलू बजट प्रबंधन का नाम देते हैं। वस्तुतः घरेलू बजट प्रबंधन हमारे परिवार की सभी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक सरल कारगर तरीका है। सभी घर परिवार नौकरी पेशा हो या व्यापारी वर्ग हो, बिना बजट बनाए काम ही नहीं चलता। वर्तमान दौर में जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए तो अत्यंत आवश्यक है कि हम अपना घरेलू जीवन यापन चलाने के लिए घरेलू बजट प्रबंधन इस तरीके से करें ताकि हमारा घरेलू बजट संतुलित रहे और हमें परेशानी भी ना हो। तो फिर आइए जानें बजट संबंधी छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। परिवार में प्रतिमाह के मदों अथवा जरूरतों पर संभावित खर्च का एक अनुमानित ब्यौरा अथवा विवरण बनाएं। सामान्य तौर पर एक घरेलू बजट में परिवार की मासिक आय का 50% हिस्सा परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे परिवार के सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की व्यवस्था के लिए मकान, शिक्षा, चिकित्सा पर खर्च हो जाता है। बाकी बचे हुए 50% में एक परिवार को अगर उसने किसी प्रकार का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई या मासिक किस्त देने के पश्चात सुरक्षित भविष्य हेतु बचत करने के लिए एक निश्चित राशि का निवेश, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या स्वास्थ्य से, करना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सर्विस या व्यापारी वर्ग से हैं तो नौकरी जाने या व्यापार में घाटा लगने जैसी गंभीर परिस्थितियों के चलते जब तक कि कोई दूसरा काम ना मिल जाए, आप आर्थिक रूप से ना संभल जाएं, एक आवश्यक राशि बचत खाते में अवश्य रखना चाहिए, जिससे हम विपत्ति के दिनों में उस राशि से अपना काम चला सकें। इसके साथ ही हमें अपनी आय से कुछ रकम उन आकस्मिक खर्चों हेतु अवश्य बचाना चाहिए जो कि अचानक सामने आ जाते हैं। इसके लिए प्रतिमाह कुछ रकम अपने खाते में अवश्य रखना चाहिए। मनोरंजन या कहीं घूमने जाने संबंधी जरूरतों का भी हमें बजट में प्रबंध करना चाहिए। अब हमारा घरेलू बजट संतुलित रहे इसके लिए सर्वप्रथम हमें होड़ या दिखावे में ना पड़कर आर्थिक स्तर के अनुसार घरेलू बजट का प्रबंधन करना चाहिए। यह बात समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए लागू होती है। घरेलू बजट का प्रबंधन कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। इसलिए हमें अपने वित्तीय आय के साधनों की उपलब्धता के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें अपने बजट में रखना चाहिए। सीधी सी बात है कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करना अत्यंत जरूरी है उन्हें अपने बजट में सबसे पहले स्थान दें, उनका वित्त प्रबंधन पहले करें। इसके पश्चात जिन आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर सकते हैं उनके लिए बजट में संभावित खर्च तय करें। अंत में वे आवश्यकताएं जिनके लिए तमाम खर्चों और बचत जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा के पश्चात बजट में रकम बचती है तो उन पर होने वाले संभावित खर्च को व्यय करें। घरेलू बजट के विभिन्न मदों पर संभावित राशि जो कि खर्च करना है उनका मितव्ययितापूर्वक उपयोग करें। इनमें से अगर हम भोजन संबंधी व्यय, दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं को ले लें तो कुछ आसान उपाय जैसे भोजन की क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए संबंधित खाद्य सामग्री को बाजार में रेट पता करके जहां उचित कीमत पर मिले वहां से ले सकते हैं। घर पर ही भोजन में विभिन्न बदलाव कर होटल संबंधी संस्कृति पर होने वाले खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। जहां तक वस्त्रों के संबंध में बात करें, यह कहना उचित होगा कि
हमें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप

0: वस्त्र खरीदना चाहिए, क्योंकि वैश्विक संस्कृति के इस दौर में आज जो कपड़ा नया है उसे पुराना होते देर नहीं लगती। अतः अनावश्यक रूप से अलमारी में व्यर्थ के कपड़ों की भीड़ से बचना चाहिए। यही बात हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संदर्भ में लागू होती है। घरेलू बजट के एक महत्वपूर्ण मद अथवा खर्च, जैसे मकान की बात करें तो आप अपने आर्थिक स्तर के अनुसार किराए अथवा स्वयं का मकान ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप यह चुनाव कर सकते हैं कि मकान भले ही छोटा हो पर अच्छी सोसाइटी में हो, जिससे आपके जेब पर मकान संबंधी व्यय का अनावश्यक भार ना पड़े। यही बात मकान के रखरखाव के संबंध में है। जैसे मकान के बिजली संबंधी व्यय को लें, आप जहां आवश्यकता हो वहीं बिजली जलाएं। ऐसा करके आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। मकान की साज सज्जा भी कम पैसे में अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करें। घरेलू बजट प्रबंधन में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अति महत्वपूर्ण मद है, क्योंकि परिवार के बच्चों का पूरा व्यक्तित्व विकास शिक्षा पर आधारित है। आवश्यकता समझकर इस पर आय का एक निश्चित प्रतिशत खर्च करना चाहिए और संभव हो तो भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर शिक्षा के लिए अपनी बचत में से कुछ हिस्सा निवेश करना चाहिए, ताकि अवसर आने पर वह पैसा काम आ सके। इसके लिए शासन की विभिन्न बचत योजनाओं तथा जरूरत पड़ने पर एजुकेशन लोन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। आवर्ती जमा बीमा योजना या मनी बैक पॉलिसी और भी कई तरह की निवेश स्कीम का उपयोग कर भविष्य में शिक्षा के खर्च का प्रबंध कर सकते हैं। हमारी सरकार ने एवं कहीं कहीं कुछ समाज सेवियों ने शिक्षण संस्थानों को तरह तरह की सुविधाएं देकर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई है। हमें चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उन सुविधाओं का लाभ लेकर बच्चों के शिक्षा संबंधी मत का उचित आर्थिक प्रबंधन करें। जो माता पिता अपने बच्चों को गंभीर आर्थिक परिस्थितियों के चलते स्कूल नहीं भेज सकते, वे उन्हें शासन की कल्याणकारी योजना जैसे स्कूल चले हम योजना का लाभ लेकर बच्चों को शिक्षित करें। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी मत को ही लें। घर में कोई अस्वस्थ हुआ नहीं कि डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। यह तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर की फीस व दवाओं का खर्चा आजकल भारी भरकम होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर आजकल लोग स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनाने लगे हैं। प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देकर स्वास्थ्य बीमा करवाया जा सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा संबंधी बिल का जो खर्च आता है उस बिल की 75% से लेकर 80% तक राशि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से चुकाई जा सकती है। अंत में आशय यह है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई है, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से देश जुड़ा हुआ है, इसलिए आइए आज घरेलू बजट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपने चिंतन और कार्य व्यवहार में ढालकर अपने परिवार के साथ साथ देश को आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक खुशहाली एवं समृद्धि की दिशा की ओर तेजी से अग्रसर करें।
1: बहनों, अभी आपने वार्ता सुनी। विषय था घरेलू बजट प्रबंधन। वार्ताकार थी श्रीमती संध्या अग्रवाल। और अब हम बात करें इस गर्मी की, तो गर्मी में आम पुदीने की चटनी तो आप भी अपने घर में बनाती ही होंगी। पुदीना धनिया अपने अपने घर में हो सकता है कि आप सबने लगाया भी होगा, और अगर नहीं लगाया होगा बहनों तो ज़रूर लगा लें, क्योंकि अपने घर के बगिया में या फिर गमले में अगर हमें ये मिल जाता है तो हम कभी भी इसका स्वाद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये बहनों कि आप भी अपने घर में अपनी छोटी बगिया ज़रूर तैयार करें। इससे आपकी आँखों को हरियाली मिलेगी, मन खुश होगा, ताज़ी हरी पत्तियाँ हर समय आपकी पहुँच में होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने पर्यावरण के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देंगी। तो है ना, छोटी सी बगिया के बहुत ढेर सारे लाभ। बहनों, जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें जो महसूस होता है वो है ताज़ी हवा। तो बहनों, आज के समय में, आज मौसम में भी इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम हर साल एक पेड़ लगाएं

और उसकी देखभाल करें तो हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं। बहनों, जब हम अपने गमलों में लगे पौधों की सार संभाल करते हैं तो शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहते हैं। हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है ना बहनों, हम जितना आराम देंगे उतना ही ये जाम होता जाएगा और जितनी हम मेहनत करते जाएंगे हमारे शरीर रूपी जो कल पुर्जे हैं ये भी चलते फिरते रहेंगे। तो जो हमने आपसे कहा था ना कि हम देखेंगे कि इसके क्या है प्रभाव, तो अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो एक पंथ दो काज, हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो चलें, एक खूबसूरत सा गीत फिर से हमारा इंतजार कर रहा है, सुनते हैं ये गीत।

0: तो बहनों, अब आज हमारा चलने का समय हो रहा है। खूब मेहनत करें, थक जाएं तो आराम से सो जाएं, खूब अच्छी नींद आएगी जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज बहनों बस इतना ही, अनुमति दें सुधा मिश्रा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक

क्रेटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शुरुआत करते हैं लोक भजन से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक एक गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म शिकार से। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म ये इश्क नहीं आसान, इस फिल्म से आवाज़ अनवर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देवास जिले के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभाग आयुक्त और कलेक्टर मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये एक दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और ITI को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, ICAR और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए 78 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब

0: दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज

0: जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी

0: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का एक गाना। आवाजें हैं लता आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजपूत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और

ये गाना लिया था हमने फिल्म राजपूत से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल डोमड़े और अर्जुन गनेकर। और इन्होंने ये ख़त लिखा है, कहाँ से लिखा है इसमें मैं तलाश कर रहा हूँ, इन्होंने जगह का नाम नहीं दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली बार आप जब भी पत्र लिखें तो उसमें जगह का नाम ज़रूर लिखें जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। अगला गाने के इसी गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है, ग्राम फ्रांसी से लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गाने को फिल्म खुदा कसम से लिया गया है। साथ में दूसरी आवाज़ है आशा भोसले की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कनेरा मोहल्ला पटियाला से लिखने वाले हैं बत्ता परिवार के लोग, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद खान। गांधी बाग अकोला से रतन कटनकर और वैशाली कटनकर, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक, जितेग ब्रक और मीका ब्रक ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते ही ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कस्में वादे फिल्म में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में गीत। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र जिले, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गायकवाड़, वैशाली, श्वेता सुमित गायकवाड़ और कुमारी ध्वनि गायकवाड़। और इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत आपकी फरमाइश की अंतिम प्रस्तुति।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देवास जिले के टोंककला गांव की पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है और दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं।

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री शंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ की यह योजना अदरक की खेती और वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आइए अब हम आपको बता दें आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 5:33 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:00। फिल्म संगीत 6:30 पर। और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर। रात 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत, और 9:30 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित विधुर मलिक का ध्रुपद गायन, राग होगा राग केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आज के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। थोड़ी देर में हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से इसी मीटर बैंड पर आप मीडियम वेव पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफ़र हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीज़ों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ। तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा,
0: जी
1: ज़रूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिखकर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी
1: इस
0: कि उन्हें
1: तरह
0: पढ़ने
1: जी
0: लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ
1: रंगो
0: रंगोलियां
1: जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीज़ें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय

0: कि भित्तिचित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली
1: और
0: आई।
1: बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे,
0: जी उनके पति चले आए,
1: हाँ
0: पति के साथ।
1: पति के
0: जी
1: साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहाँ शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी
0: जी
1: दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज़ पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे, लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज़ पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा
0: ये
1: गया।
0: उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी। अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में ये काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपये मिले। यहाँ जी
1: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपये मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है।
0: जी
1: और भूरी भाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई
1: और
0: कह जी भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में,
0: जी
1: लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के ज़रिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला हैं जिन्होंने कागज़ और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को, कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज़ में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो

0: 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा, हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती। भाई सखी सहेली के रहते
0: जी,
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं,
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है वो होता है दोस्ती का, और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही,
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना ज़िंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती
0: देखो
1: की
0: दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं
1: और
0: ना
1: हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं,
0: जी
1: वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज 1 घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते, है
1: सही बात है,
0: ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया, हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो

0: आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरे तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर ख़रीदारी करना इनकी कितना आसान EMIs पर किसी चीज़ को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल EMI और UPI का ज़माना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज़ होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं।

0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही
0: हमें
1: कहा।
0: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
1: आमदनी
0: रखनी,
1: होनी
0: या
1: चाहिए
0: तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
0: जी
1: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है। इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
0: हाँ
1: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
0: जी
1: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
0: हाँ
1: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पे
0: और
1: चली
0: वो
1: जाती है।
0: जो 20,000 की चीज़ आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए,
1: हाँ बिल्कुल
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीज़ें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पर महंग उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो
0: जी
1: सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
0: जी
1: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
1: चलिए
0: दें?
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले

0: ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता

0: बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा तो ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया। तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे, और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं?
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन

झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं

0: जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर?

0: रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ, मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है विख्यात, तो मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने भैरव फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं, और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं तो
0: अच्छा,
1: जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज़ प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: जी, हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है,
0: हाँ
1: जैसे झांसी हमारे पास ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है, और महोबा में किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है, और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है,
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, आना पड़ेगा आपको।
0: लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम
1: नहीं,
0: मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता
1: जी,
0: दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं।
1: मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, अभी तो फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक ले विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जोर आल अली जोर ए अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो।

0: बच्चों की और कैसे खुशहाली, और कैसे खुशहाली।
1: हाँ, अलिफ़ बरा, अलिफ़ रे, अलिफ़ शो, अलिफ़ तेज़।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर
0: भाई
1: आए।
0: साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा
1: मुझे
0: क्यों?
1: बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा
0: हाँ
1: होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: हैं। इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा, तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहां पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के
1: हाँ
0: लिए? चलिए
1: दीदी,
0: बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाली दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए, रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए, अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की ये खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने और घायलों का निशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
1: और मैं हूं अनमोल द्विवेदी। युवा साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसी तारतम्य में आकाशवाणी एट 90 हैशटैग आरजे नेक्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर में आयोजित हुआ। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस प्रतियोगिता के कुछ संपादित अंश।
2: यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानीगणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र राजौरिया है और मैं BMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक था व्यक्तित्व, विकास और भाषा। जब ये टॉपिक पढ़ा तो सबसे पहले जो दिमाग में आया वो था कि एक पंक्ति थी कि कोष कोष पे बदला पानी, चार कोष पे बदली वाणी। हम कितने वर्सटाइल, मतलब कि हमारा देश कितनी विविधता वाला है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी भाषा, हमारे सामने वाले जो भी पर्सन होता है उसको बताता है कि हम किस जगह से, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
3: सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनिका जोशी है, मैं सेकेंड प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया का उचित उपयोग। सोशल मीडिया में हम लोग आजकल यूज़ क्या करते हैं, उसका यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम फोटोज अपलोड करते हैं, स्टोरीज करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को दिखाना होता है कि हम गए कहाँ थे। बट इसका इंफॉर्मेटिव यूज़ भी है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे, यदि हम लोग मेडिकल फील्ड के लोग हैं तो बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धति है आजकल सोशल मीडिया पर दिखती है, हम लोगों को उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा नाम सबिया अंसारी है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है

0: वन्य जीव संरक्षण क्यों जरूरी है? तो हमको जानना चाहिए कि जो हमारे जीवों की प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। आजकल इतना प्रदूषण और हमारे वृक्षों की इतनी कटाई हो रही है, वो सब बंद करना चाहिए। परिस्थितियों को संतुलन में रखने के लिए हमें जीव संरक्षण करना चाहिए।
1: साथियों, इस प्रतियोगिता के विजेता रहे आशीष कुमार जैन आज हमारे साथ एक दिन के आरजे के रूप में शामिल हैं।
2: आशीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं युवाणी में। आपको कैसा लग रहा है युवाणी कार्यक्रम में जुड़कर?
3: सनाया जी, मुझे आकाशवाणी में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आकाशवाणी विगत 90 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की दिशा में और देश विदेश की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जन जन तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
2: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
1: तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 में प्रकाशित किया है?
2: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार में किस देश की टीम ने वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत की है? तो हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का। मूवी है 3 इडियट्स, बोल है स्वानंद किरकिरे के, इसे गाया है शान, सोनू निगम और स्वानंद किरकिरे जी ने।

0: सनाया, क्या तुम्हें पता है एक नई तरह की साइलेंट बीमारी हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, जिससे दिमाग कमजोर हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, और तो और यह अवसाद का बड़ा कारण भी बन रही है।
1: अच्छा, मुझे लग रहा है शायद तुम मोबाइल एडिक्शन या हो सकता है स्क्रीन एडिक्शन पर बात कर रहे हो।
0: बिल्कुल सही कहा शनाया तुमने। आज हम चर्चा करेंगे स्क्रीन एडिक्शन और युवाओं पर बढ़ते इनके प्रभाव के बारे में। अच्छा आशीष जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में?
2: दोस्तों, जैसा कि मैंने पढ़ा है, एक नए शोध में यह बात सामने आई है कि युवाओं को स्क्रीन एडिक्शन तेजी से अपने माया जाल में फंसाने लगा है, जिससे कई तरह की परेशानियां और बीमारियां सामने आने लगी हैं। सनाया, क्या आप हमारे दोस्तों को स्क्रीन एडिक्शन के बारे में कुछ लक्षण बता सकती हैं?
1: हाँ जी, क्यों नहीं। स्क्रीन एडिक्शन को ऐसे पहचाना जा सकता है मानो व्यक्ति स्क्रीन पर बिताए जाने वाले टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर स्क्रीन उपलब्ध ना हो तो बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस करता है।
0: इसके साथ साथ सोशल विड्रॉल सिम्टम भी दिखते हैं, और जिसके कारण वो परिवार और दोस्तों से कम बात करता है और ऑनलाइन ही ज्यादा समय बिताता है। स्क्रीन एडिक्शन का मानसिक प्रभाव भी बढ़ता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फीलिंग ऑफ जेलिसी जैसी मानसिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं।
1: अनमोल, इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी नींद पर। देर रात तक फोन चलाने से स्लीप डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम होती है, और नींद पूरी ना होने से अनिद्रा, इंसोमेनिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, स्क्रीन एडिक्शन के कितने सारे निगेटिव इफेक्ट्स हैं, आप सभी एक बात जान लीजिए। अगर आपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं किया, तो स्क्रीन टाइम आपको कंट्रोल करने लगेगा, और इससे आपको आँखों की रोशनी, ब्लर्ड विजन, और यहाँ तक कि छोटी उम्र में बच्चों को स्पेक्स, चश्मे आदि पहनने भी पड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल आशीष जी, तो इसी बात के साथ हम कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सूरमा से और जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: सनाया, कभी पुराने रेडियो को घुमाते हुए आवाज सुनी है? ये आकाशवाणी है।
1: हाँ, और जैसे ही यह शब्द सुनाई देता है, लगता है समय थोड़ा थम सा गया है, जैसे किसी कहानी का दरवाजा खुल गया हो।
0: और सोचो, वही आवाज पिछले 90 सालों से हमारे देश की धड़कनों में जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, कितनी यादें, कितनी कहानियां और कितनी आवाजें जो पीढ़ियों को जोड़ती आई हैं। आशीष जी, आपके इस पर क्या विचार हैं?
2: हाँ, मेरा सोचना है कि क्या डिजिटल दौर पर भी आकाशवाणी युवाओं के लिए कुछ रेलेवेंट है क्या?
1: प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, लेकिन कंटेंट की वैल्यू आज भी वही है, और आकाशवाणी ने खुद को टाइम के साथ अपडेट भी कर लिया है।
0: मतलब ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न।
1: एग्जैक्टली, आज आकाशवाणी सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स, हर जगह मौजूद है।
0: और खास बात है कि यूथ को अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है।
1: हाँ, युवाणी जैसे कार्यक्रम तो खास तौर पर युवाओं के लिए ही होते हैं, जहाँ वो अपनी आवाज, अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ युवा सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि बोलते भी हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। और एक चीज जो मुझे खास लगती है, आकाशवाणी हमेशा से ट्रस्टेड रिसोर्स रहा है।
0: सही बात है, फेक न्यूज़ के इस दौर में रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और आकाशवाणी इस भरोसे को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: और कल्चरल कनेक्शंस भी बन रहे हैं, म्यूजिक, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, आकाशवाणी ने हमारी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखा है।
0: और क्या, 90 साल सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक लेगेसी है, एक सफर है जो लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: और इस कड़ी में युवा ही इस कड़ी को, ट्रेडिशन को फ्यूचर से जोड़ते हैं।
2: एग्जैक्टली, युवा जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आकाशवाणी और अधिक वाइब्रेंट बनेगा।
1: तो सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म है, मौका है, बस जरूरत है कि युवा आगे आएं और अपनी आवाज को पहचान दें।
0: तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये सुकून भरा गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से, और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: सनाया, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आज के युवा सच में समाज के लिए कुछ कर सकते हैं या बस सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं?
1: देखो, कुछ लोग सिर्फ पोस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो असल में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं।
0: मतलब रियल वर्क भी हो रहा है।
1: बिल्कुल, कोई बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स में हिस्सा ले रहा है, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। छोटे छोटे काम, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट।
0: हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग ज्यादा दिखावा भी नहीं करते।
1: असली जन कल्याण वही है जहां काम हो, शोर नहीं।
0: लेकिन एक कॉमन सोच है, मैं अकेला क्या बदल लूंगा?
1: और यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे एफर्ट से ही शुरू होता है। आशीष जी, आपकी क्या राय है?
2: हाँ, मेरा सोचना है अगर कोई एक बच्चा पढ़ा दे या किसी की छोटी सी भी मदद कर दे तो बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। और यह भी बहुत बड़ा काम है, किसी के लिए छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदल सकती है।
1: और आज के यूथ में एनर्जी तो है, बस सही डायरेक्शन चाहिए।
0: सही कहा, अगर यही एनर्जी सही काम में लगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेटर हो सकती है।
1: एक चीज मैंने और नोटिस की है कि आजकल बहुत सारे युवा वॉलंटियर वर्क में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
2: हाँ, सही कहा आपने, जैसे एनजीओस के साथ जुड़ना, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना या फिर डिजास्टर सिचुएशंस में हेल्प करना, ये सब पहले कॉमन नहीं था।
1: और पैंडेमिक के टाइम पर तो युवाओं ने कमाल ही कर दिया। खाना पहुंचाना, मेडिसिन अरेंज करना, सबका ख्याल रखना।
0: और सनाया, जन कल्याण का काम पेशेंस का काम है, इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। बदलाव धीरे धीरे आता है और कंसिस्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है।
1: छोटा काम हो लेकिन रेगुलर हो, वही असली फर्क लाता है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
2: हाँ, सही कहा आपने, अगर स्कूल और कॉलेज पर ही बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाए तो वो आगे चलकर नेचुरली समाज के लिए काम करेंगे।
0: साथियों, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक हैबिट बननी चाहिए। और एक सिंपल सी बात है, कंप्लेन कम, कंट्रीब्यूशन ज्यादा, सलाह नहीं सहयोग करें।
1: तो साथियों, इसी के साथ जुड़ते हैं यह प्यारे से गीत से, जिसे लिया गया है मूवी धड़क 2 से, जिसे गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: तो साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम के प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 में प्रकाशित किया है, जिसका उत्तर है खाद्य और कृषि संगठन।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार में किस देश की टीम ने वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत की थी, जिसका जवाब है इंडिया ने। साथियों, अब अनुमति दीजिए आज के अपने रेडियो साथी

0: सनाया नायक,
1: अनमोल द्विवेदी और आज के कार्यक्रम के एक दिन के आरजे के रूप में सम्मिलित आशीष कुमार जैन जी को। साथियों, आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: आकाशवाणी जबलपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
4: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है द क्रिमिनल फिल्म से, शब्द रचना इंदिवर की, संगीत MM क्रीम का, आवाज कुमार सानू की।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में काला पत्थर फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। साहिर के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन का।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

आप सुन रही थी अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद को। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम था दी ग्रेट गैम्बलर। आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की बनाई धुन पर आनंद बख्शी के बोल हैं, एक दूजे के लिए फिल्म का नाम, और इस मधुर गीत को आवाज़ दी है SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

पहले हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, कलाकार होंगी मोहिनी तिवारी। सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा शाम 6:45 पर, कलाकार मीता भट्टाचार्य।

किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:21 पर आज का आकर्षण होगा बसदेवा। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित सुर्खियों में कार्यक्रम सुना जा सकता है रात 8 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग एक आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमल कांति एंडे की और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉ बैजनाथ गौतम। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हर रोज की तरह रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये तो थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम, और लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हमारी पहली सभा में कल प्रातः 6:05 पर वंदना कार्यक्रम में सुनिएगा भक्ति रचनाएं। श्री रामचरित मानस गान 6:35 पर। कृषि समय की कल सुबह 6:45 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग जबलपुर 7:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। लोक रसधार कार्यक्रम में कल सवेरे 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे मिठाई लाल चक्रवर्ती के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। गांधी चर्चा 9:15 पर। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुन रहे थे मीडियम वेव पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी भोपाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस में इस घंटे की खास खबरें।

0: हफ्ते की ये खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध संघ सांची ने भी दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात

800 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
3: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
3: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
3: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
3: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
3: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
3: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
3: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
3: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
3: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
3: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
3: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं,

0: अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
1: जी,
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों,

0: सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: मैंने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने अनीता यादव के गाए खुश बुंदेली लोकगीत सुने। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है सुगम संगीत का। कलाकार हैं मीता भट्टाचार्य।

आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं मीता भट्टाचार्य के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, अब आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का

0: आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजा जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meeting took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy,

0: ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ. यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जाँच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता और घायलों को

निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब एक साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारम्भ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। IPL में अब से कुछ देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर DGP कैलाश मकवाणा ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के ITI मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में LPG और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

हम बस देबा आ गए रे कि अरे मोरे राम, सबेरे भैया बहनन से माधुरी बिन्ना की, राम राम कि अरे मोरे राम।

अरे मोरे राम आयुष्मान डिजिटल मिशन की, अरे मोरे राम आभा ऐप से बनने कार्ड की, अरे मोरे राम बा में मिल है एक नंबर की, अरे मोरे राम।

अरे मोरे राम, आयुष्मान डिजिटल मिशन है कि अरे मोरे राम, कर दो भैया इन कमाल कि अरे मोरे राम, डॉक्टर साहब झट दिख ले हैं कि अरे मोरे राम, दवाई की पर्ची जांच रिपोर्ट है कि अरे

0: की अरे मोरे राम, बीमारी की पुरानी बातें भैया की अरे मोरे राम, अब को ना भूल पाए की अरे मोरे राम, गांव गांव और घर घर पहुँच की अरे मोरे राम, डिजिटल ई को साथ भैया की अरे मोरे राम, सुख सुविधाओं की डोरी भैया की अरे मोरे राम, सबके अपने हाथ भैया की अरे मोरे राम, आ जाई अपनी आईडी बनवाओ की अरे मोरे राम, टाले मटोले से ना बने हैं काम की अरे मोरे राम, डिजिटल इंडिया के संगे भैया की अरे मोरे राम, रहो सब खुशहाल भैया की अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम की अरे मोरे राम।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस

0: में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पुलिस?
4: मिस सीमा
0: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हाँ तो भैया, माधुरी विन्ना आ गई अपनों कार्यक्रम बसदे वाले के, और हमारे भैया हरे हमेशा चिट्ठियां भी भेजा थे और हमेशा इंतजार रहे थे उन्हें कि अपने बसदेवा कार्यक्रम में आज विन्ना आई हैं, कौन से लोकगीत सुनवा हैं और कौन सी कहानी लेके आई हुई हैं। तो भैया हरो, कहानी और लोकगीत तो बाद में सुनवा हैं और आप लोगों को हमेशा इंतजार रहे थे कि कविता पाठ कौन सा हुई है, तो हम बिल्कुल देरी नहीं कर रहे और आपको सुनवा रहे एक उंदा सो कविता पाठ, श्रीपति नीलम श्रीवास्तव को कहो भाओ।
6: सबई पंचन के हमारी प्रेम भरी नमस्कार, राम राम। भगवान जी आज सो ये कारज लेके आए हैं,

और एक हम कविता पेश करवे जा रहे हैं, जोन कसक मोड़ी के मन में रहे थे आज बोइया हम पढ़वे जा रहे हैं। ओ बाबू सुन लई हो हमार मन की कसक, ओ बाबू सुन लई हो हमार मन की कसक, काय तेने कही थी हम तोरी अखियां को पानी, काय तेने कही थी हम तोरी अखियां को पानी, मगर कन्यादान करके हम आओ ते बन गओ बड़ोदानी, कन्यादान करके हम आओ ते बन गओ बड़ोदानी। अंगना की मिटिया अम्मा कहती, अंगना की मिटिया अम्मा कहती, करजवा पथरा को हो गौ का, करजवा पथरा को हो गौ का जामे बिटिया रहती, करजवा पथरा को हो गौ का जामे बिटिया रहती। हमका परधन कह कहते ने, हमका परधन कह कहते ने हमरी इक्कउ ना मानी, हमरी इक्कउ ना मानी, ब्याह कर परदेसवा ते भी हो गई बड़ी ज्ञानी, ब्याह कर परदेसवा ते भी हो गई बड़ी ज्ञानी। न्यारो ना करो तेने भैया खे अम्मा, न्यारो ना करो तेने भैया खे अम्मा, हमका ओझल करबे की ठानी, हमका ओझल करबे की ठानी। नदिया ताल तलैया सबरे भय पर आए, नदिया ताल तलैया सबरे भय पर आए, पीहर के अंगना की महुआ चंदन की खुशबू देह से न जाए, पीहर के अंगना की महुआ चंदन की खुशबू देह से न जाए। पी के संग तन मन राचियो, पी के संग तन मन राचियो, अंतर मन की कौन कहे, पी के संग तन मन राचियो, अंतर मन की कौन कहे। जो पीहर की देहरी में लाग्यो, जो पीहर की देहरी में लाग्यो, रे अम्मा रे बाबू मोहे ना करियो पर आई, रे अम्मा रे बाबू मोहे ना करियो पर आई, मैं इत उत कहूँ जाऊँ, मैं इत उत कहूँ जाऊँ, लौट के उतई आऊँ, काय मैं तोरे अंगना की पुरवाई, रे माई मैं तोरे अंगना की पुरवाई, मैं तोरे अंगना की पुरवाई। और एक ठैया है सुबह ऐसो ही सुना दे रहे हैं, अब लो ना आए सवरिया अमराई बोराई रे गुइया, अब लो ना आए सवरिया अमराई बोराई रे गुइया, महकन लागे घर द्वार गलिया, महकन लागे घर द्वार गलिया, बेला से अंगना भव खुशबू खुशबू, बेला से अंगना भव खुशबू खुशबू, मनवा में हिलोरे मारे गुलाल, मनवा मा हिलोरे मारे गुलाल, सावन की टेर सुनाई रही लुगाइया, सावन की टेर सुनाई रही लुगाइया, मस्ती माँ एक भई भोर और रतिया, मस्ती माँ एक भई भोर और रतिया, सज रही कजरी की गलियां, सज रही कजरी की गलियां, सर से सरक रही चुनरिया, सर से सरक रही चुनरिया, मितवा को बुलाए रही कोयलिया, मितवा को बुलाए रही कोयलिया, रंग में भिगो दे रंगरेज रसिया, रंग में भिगो दे रंगरेज रसिया, कच्चो ना रंगियो पक्को ही रंगियो, कच्चो ना रंगियो पक्को ही रंगियो, मैं ना छुड़ाऊं चाहे बीते उमरिया, मैं ना छुड़ाऊं चाहे बीते उमरिया, और हाँ हम का ना समझो राह की गुजरिया।

0: हम का न समझो राह की गुजरिया सवरिया, सुन लइयो हम तो तोरी दुल्हनिया सवरिया, हम तो तोरी दुल्हनिया सवरिया, हम तो तोरी दुल्हनिया। अंगना छोटे छोटे हो गए, काहे दीवारन से हम और अन्य हदे बांध दई। अंगना छोटे छोटे हो गए, काहे से कि दीवारन से हमने हदे बांध लई। पहले नीम तले सवई सुस्ता ले थते, पहले नीम तले सवई सुस्ता ले थते, अच्छी बुरी सवई बता लेत रहे, अच्छी बुरी सवई बता लेत रहे, और लो मरवे जीवे की खबरिया सोई उते मिल जात हती, मरवे जीवे की खबरिया सोई नीम तले मिल जात हती। अब ना जाने जो कौन सो चलन चलो है रामधे, अब ना जाने जो कौन सो चलन चलो है, खबरिया की तो भूलो, खबरिया की तो भूलो, अब पड़ोसी सोई न्यारे हो गए हैं। बड़ोसो नीम चौड़ी सी चौपाल न जाने कहाँ बिला गई, बड़ोसो नीम चौड़ी सी चौपाल अब न जाने कहाँ बिला गई। ससुरो सवाई के हाथ में टुनटुना है, ससुरो सवाई के हाथ में टुनटुना है, जो टुनटुना दुनिया की खबर बताते, सबरई अपने में मस्त है, आज वो अकेले है। अंगना कैसन के बड़े हूँ हैं, सोचो अंगना कैसन के बड़े हुए है, मन खन खे अपनो मनवा बड़ो करन पढ़े, अंगना ना बड़े भो है, मन खन के मनवा बड़ो करन पढ़े, तबई तो चौपाल सज है, अंगना ना बंधे कोई दीवारन से, सबई खे ऐसे प्रेम से रहने पढ़े, जबई तो चौपाल सज है, जबई तो चौपाल सज है।
1: हाँ तो भैया अबे अपन ने जा कविता पाठ सुनो श्रीमती नीलम श्रीवास्तव को, और अब हो रही है कहानी की बिरिया, और हम बिल्कुल देर नहीं कर रहे, हमारे भैया बिन्नन को हमेशा इंतजार रहे थे कि बिन्ना आई और कहानी सुनाए, और भैया हमारे हाथ में चिट्ठियाँ सोई हैं, हम जो सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चिट्ठियाँ बाँच सकें और हमारे भैया हरें सुने तो उन्हें भी अच्छू लगे। तो भैया कहानी शुरू करते हैं हम, बस

अरे मोरे राम। तो भैया रो, एक समय की बात हती, सलकनपुर नगर में एक व्यापारी रहता थे। उनके दो मोड़ा हते, इनको नाम हतो एक जिनको नाम हतो एक को नाम हतो मोहन और दूसरे को नाम हतो श्याम। दोनों देखवे सुनने में बड़े सुंदर हते। व्यापारी के मोड़ा हते खूब अच्छे से लाड़ प्यार से पाले गए थे। लेकिन इनकी जो अम्मा हती वे बचपन ही में ख़त्म हो गई थी। अब व्यापारी नहीं इन्हें पालो पोसो हतो। अब एक बार का भाव कि व्यापार में उन्हें ज़्यादा घाटा हो गया। सो जन उनके पिताजी रहे सो वे उनकी तबीयत खराब हो गई। सो कछु दिन बाद वे ख़त्म हो गए। अब जब मोड़न ने देखो कि अब व्यापार में तो घाटा हो गया सो व्यापार भी नहीं चल सका। तो इन्हें ज़्यादा सीखो साखो भी ना हाथों कैसे लाड़ प्यार में पाले थे। पिताजी सब देख रेख कर रहे थे। सो अब इन्होंने कही कि अब हाथ में कछु नहीं है, पैसा रुपया तो ज़्यादा है नहीं है भैया, जित तो है सो अपन ले रहे और जो घर मकान है ईखो अपन तालू लगा दे रहे और चले कछु काम करवे के लाने। सो बोले ठीक है। सो दो ही चल रहे अपनों थोड़ी थोड़ी सामान बांध के। अब घोड़ा के अपने अपने एक एक घोड़ा लाओ और चल रहे दोनों जने। अब जब जैसे गए सो रास्ता में है ना दो रास्ता जा रही थी। सो उनको एक मोहन बोलो कि भैया अपन संगे रहे हैं तो हो सकत कि ज़्यादा तरक्की ना कर पाए, अलग अलग चलाते हैं, देखते हैं कि एक साल बाद तुम कितनी तरक्की करत और हम कितनी की तरक्की करत। सो दोनों बोलो ठीक है। सो बोले कि अपन है ना जो मंदिर है तहीं पर आके मिले हैं। सो बोले ठीक है। सो अपने अपने रास्ते दो ही चल रहे। अब चले सो तनक दूर पर देखो तो एक नगर सो आओ हतो नगर में पहुंच गए थे। लेकिन होते अच्छे अच्छे पेड़ बन लगो तो सो पेड़ पेड़ के नीचे मोहन ने आराम करो और बोले कि जैसे ही थके तो हते ही सुबह सो लेट गए। सो जैसे ही है ना नींद लग गई सो काफ़ी देर हो गई। बाद में जब उठो मोहन सो मोहन ने देखो कि अरे हमारे जो कमर में चाबी बंधी थी घर की बस सोने की हो गई थी। सुनने की जो कैसे है सोने की कैसे हो गई, कहे में पारस पत्थर मिल गए, कहते आस पास में पारस पत्थर है का। सो उनने देखो होते तो नाएँ बाएँ देखो सो तो पे एक धुंधलो सो पत्थर देखो सो उनने रगड़ो कछु और चीजन में उनके पास में हती। सो सब सोने की हो गई। सो बोले अरे हमारी तो किस्मत की चाबी हमें मिल गई, अब हमें कछु कर भी धर भी की जरूरत ही नहीं है, जो पारस पत्थर मिल गया जो जो चीज

में छुपा दे हैं, जोन चीज में अगड़ जाए वो सब सोने को हो जाए। सो भैया भी चल दे। अब उनने कही कि गए गए गांव में, सो ये अच्छी लंबी लंबी छड़ें खरीदी लोहे की और ले आए। सो उनने ऊखों उससे ऊखों जैसी सोने रगड़ी, सो भी सब सोने की हो गई। उनने बेच बाँच के बढ़िया अच्छो अपनों घर मकान ले लाओ, जो ले लाओ वो ले लाओ, अपने ठाट बाट से रहने लगे। अच्छे कपड़ा वपड़ा ले लाए, अब कमावे की जरूरत ही ना थी। अब भैया ऐसे करके बहुत सारे लोग उनके दोस्त दोस्त हो गए, कई लोग उनकी मदद कर दई, सो और दोस्त हो गए। अब होते पता चलो कि वो नगर में राजा के ते नृत्य करवे वाली एक नृत्य की है, बहुत अच्छो गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो बोले कि हमें सो ही जाने हैं। सो सब जन ने कही कि चलो चलें। सो होते गए, सो नृत्य की ने उनको नृत्य नृत्य दिखा और गाना गाना गाओ। सो वे बड़े प्रसन्न हो गए। सो उनने नृत्य को नृत्य की को भी अच्छो उपहार दो सोने को। सुबह बड़ी बोले कि अरे बहुत बढ़िया। सो भैया उनको आभगत होने लगी, उतर रोज जान लगे। अब उतर कहा भाव कि बे उनकी आदत रहे कि कहूँ कछु भी सामान रखू रहे सो तनक सो घिस दें सोनो, कहूँ कहूँ उनके जो का कहलात है जो सामान आए, गिलास आए, कटोरी आए, कछु भी आए सो सोनो घिस दे, तनक सो घिस दे सोने की हो जाए। सो अम्मा बड़ी चतुरी हती। सो अम्मा ने कही हो ना हो इसके पास में पारस पत्थर है, तभी जाके जो सोने की हो जाती हैं चीज़ें। सब अभ्य रहे उनकी बहुत आभगत करने लगी, भैया हम आए तेरा हो ऐसो वैसो सब बातें करने लगी। एक बार का भाव कि उन्होंने अपनी युक्ति लगाई कि कैसे करके इसे सोने पारस पत्थर लेने हैं। अब जो जो मोहन है तो वो नृत्य की से बड़ो प्रेम करत, तो बड़ो चाह था तू। सो एक बार नृत्य की ने कही कि हमारे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब तो हमारा जीवन निकल ही जे है, अब तो हम मरे जे हैं। सो वो बोले कि हाँ ऐसो नहीं है, हम वैद्य को बुला ले रहे। सो उनकी माँ बोली कि नहीं, हमारी बहन को भी ऐसे ही दर्द भाव तो, और है ना जब वैद्य को बुलाओगे। सो वैद्य ने कही थी कि को अगर अगर सर के ऊपर पारस पत्थर दो 3 बार रगड़ दे तो जो जो बिल्कुल सही हो जाए और उनके बाद ही को सर में दर्द ही ना हुई है। सो बोलने लगे ऐसो आए। सो बोले कि और हमारे पास में पारस को पत्थर कहाँ से आ जाए, तो उनसे बातें हैं को के पास में होते का। सो बोलने लगे कि इसे है ना हमारी बहन मर गई। सो बोले अच्छा। सो बेचारों घबरा गए। सो उनने कही नहीं हमारे पास में है पारस को पत्थर। सो उनने पारस पत्थर निकालो 3 बार रगड़ो, वे तो बनी बनाई हती, सो इतना देर में तो सही हो गई। अब इन्होंने कहा करो कि अपने आदमी बुलाए और है ना पारस पत्थर छीन लो। बोले कि सब सब ले लो इनसे पारस पत्थर। सो पारस पत्थर जैसे ले लो और बोलने लगी खुद भगन ना दियो, जो अपने ते बाग हैं बाग में है ना जे चिड़ियाँ उड़ा है। सो बाग में और टाट जितने सुंदर कपड़ा हाथी सो भी सब उधराए, टाट के कपड़ा पहना के इखों बाग के अंदर डार दो। और बोले इतई पहना जो रह है और इतई पे चिड़ियाँ चिड़ियाँ भगा है, बस इकी यही सजा है। और जो जय है तो सब जगह बता दे है, इसे कोखो पतू ना पता ना चले। और बाहर इनने जो अब पैसा वाले तो हती जो अरे राजनृत्य की हती, सो फिर बाहर है ना जितने भी पहरेदार बैठार दे। अब देखो तो इनकी जिंदगी तो पूरी बदल गई मोहन की। अब रही श्याम की। अब श्याम गए अपने अपने दूसरे नगर। सोते नगर में पहुंचे, सोते पर राजा के जो मंत्री हते उनकी सवारी जा रही थी। सो सवारी में जैसे ही उनने कही, सो सब जने कही कि राजा की मंत्री की सवारी जा रही है, भैया हाथ जोड़ लियो। सो बोले ठीक है। सो उनने हाथ जोड़े, अब देखे सुनने में अलग ही दिख रहे थे सब जनन से, अच्छे सुंदर कपड़ा पहने, अच्छे सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर अलग ही दिख रहे थे। सो उनने जैसे ही हाथ जोड़े, सो राजा के जो मंत्री हते भी उनने कही कि जो लड़का तो अलग सो दिख रहा। सो उनने तनक अपनी घोड़ा गाड़ी रोकी, बोले काय बेटा कहाँ से हो। सो जी बोले, सो इनने कछु न कहो इतजी गई कि हम भी एक जमाने में हैं रोन लगे खूब जोर जोर से। सो उनने कही जरूर कोनो ना कोनो घर को बहुत अच्छा लड़का है जो जो इतने पे आ गए है, तो इको अपने साथ में बैठा ले रहे। सो उनने कही तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हें राजा के पास में ले जा रहे, उतने कछु ना कछु तुम्हें काम मिल जाए। सो राजा के पास में भी पहुंची। सो राजा ने कहा भाई तुम तो देखो सुनो बढ़िया हो, समझदार लग रहे हो, तो तुम कहाँ के हो, का काम करते। सुबह सुनने जय कही एक जमाने में हम भी हैं रोन लगे। सो उनने कही ना रो ना रो, तुम रो ना, तुम्हें कोनो ना कोनो काम दे दो, जैसे वैसे एक छोटे सो पद दे दोगो। अब तो काम हम करने लगी, लेकिन सतनंद अच्छू खेलें राजा के साथ साथ में रहें तो राजा उनसे बड़े प्रभावित होकर, ईमानदार तो हत्या ही और होशियार भी हती। तो एक बार का भाव
कि राजा से शतरंज खेलत खेलत बोलने लगे कि महाराज हमें आपके न जो खजानची है ई पे शक है, जो है ना आपको खजानो है ना खाली कर रहा है। सो और बोले कि हम तो बहुत पुरानो सेवक है, मतलब मंत्री है, और ऐसे कैसे हम मतलब बोल दें कि कछु सबूत तो भाव चाहिए। सो तब तो है ना हम उन्हें ऐसो मतलब बताएं कि भाई तुमने जो करो। बोले महाराज ऐसे तो हम सबूत इकट्ठे करने तो बहुत टाइम लग जाए।

तो बोले फिर कैसो करो जाए। तो बोले ऐसो करो जाए कि ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बोले कैसे? बोले कि कल है ना आप राज दरबार में जैसे ही मंत्री जी आएँ, खजांची आएँ, आपको है ना जैसे ही नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो आप उनकी तरफ है ना गुस्सा से देखियो और मुँह उस तरफ कर लियो। बोले हाउ ठीक है। सो बोले अब ऐसे करो भैया, सवेरे उनको जब राज दरबार लगो सो खजांची जैसे आए सो उन्हें गुस्सा से देखो उनके तरफ, वो मुँह उस तरफ कर लो। सो खजांची को मन न लगो, उन्हें कभी लगत पता चल गो है महाराज को कछु न कछु बात तो है। सो वो चुपचाप अपने बीमारी को बहानों बोले राम महाराज हमें अच्छू नहीं लग रहा, हम घर जा रहे हैं। सो बोले ठीक है। सो घर पहुँच गए। अब शाम ने कही कि राजा खजांची से पहले भी जात आता रहते हो तभी तो पता चलो तो कि जो खजाने में कछु गोलमाल कर रहा है। सो उन्होंने कही काय श्याम, और तुमने तो राजा जी आज हमसे बड़े गुस्सा आते। सो बोले अरे आपकी है ना शिकायत कर दी कौन उन्हें कि आप खजाने में से पैसा निकाल रहे हो। सो बोले हैं। बोले अब क्या करें? सो बोले कि अब खजाने में से पैसा अब जो ही है कि राजा को पता चल गया, वो राजा ने कह दिया है कि आपको 100 कोड़ा मारे जे हैं 15 दिनांक के अंदर, और है ना और पूरा पैसा रुपया आपको छीन लो जे है, और उन्हें सब पता चल गो, गुप्तचर फिरत हैं उनके। सो उनने कही कि काए हम का करें? सो बोले कि हमें आप तुम बताओ हम युक्ति की है ना कि हम आओ मतलब मान सम्मान भी बनू रहे और हम इस झंझट से मुक्त भी हो जाएं। सो बोले कि सबसे पहले तो एक काम करो भी पैसा निकाल के हमें दे दो, सो हम कौन ना कौन बहाने से खजाने में धरवा दे हैं, और फिर है ना फिर हम और राजा के पास में सवेरे जाके जो गइयो कि महाराज अब हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहता है, और आपकी जो मोड़ी है उखे संगे कह दियो कि हम जो बहुत अच्छा लड़का है मी के साथ में ब्याह कर वो चाहते हैं, और अपनो पद भी यही खुदे वो चाहते हैं। सो बोले कि इतने में हो जाए। सो बोले कि देखो जब तुम पद छोड़ दे हो तो राजा का चूके हैं ना, और जो खजानों को पैसा है वो हमें दे दो, सो हम कौन ना कौन बहाने से उनके पास में रखवा दें। सो बोले ऐसो आए। सो बोले ठीक है, कह के भैया 100 कूड़ा सबके सामने लगे हैं तो हमें कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, हम तो सुधर वो चाहते और हम जैसे कोनो काम ना करें, हाथ पांव जोड़न लगे। बोले चिंता ना करो। बोले कि अब हम एक काम कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं और हम कछु दिन बाद आएँ, और तुम है ना जो महाराज को बोल दियो कि है ना हम कछु दिन के लाने छुट्टी लेके चले गए। सो बोले ठीक है। अब जी रात आई खो गए महाराज को पैसा दाए, उनके खजाने के जितने हते सुनने पैसा दाए। बोले महाराज अब तो भी सुधर गए हैं, अब होगा कि सांप भी मर गई हो लाठी भी ना टूटी, उन्हें कछु मतलब अपन को हानि भी नहीं पहुँचाने पड़ी, सुधार भी होगा, अभी कल आके आपको कछु बताएं। सो बोले ठीक है। बोले हम कछु दिन के लाने बाहर जा रहे हैं। बोले ठीक है। अब तैसे चले। अब इतने पे खजांची को तो बोले महाराज हमारी तबीयत ठीक नहीं रहे थे, और जो लड़का बहुत अच्छा है श्याम, तो हम यही खो अपनो पद हम सोचा थे कि दे दें और अपनी बिटिया को ब्याह सो यही के संगे करें। सो राजा बोले सही है श्याम ने अपनो काम कर दो, अब जे चले अपने घोड़ा लो और चल दे। अब जैसे ही चले सो पहुँचे वही मंदिर के पास में जहाँ पे उनको भैया उसे अलग भाव तो सो बोलन लगे। सो तो पता लगाओ कैसे एक साल हो गो तो, सो पता लगाओ कि भैया कहाँ है, सो ने मोहन के बारे में पता लगाओ। सो लोग अन्य कछु जन ने बताई कि भाई मोहन मोहन मोहन के साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है, और नृत्य की के बाग में है ना चिड़ियाँ भगात है टाट के कपड़ा पहने रहे। सो उन्हें कही अच्छा है सो आए। सो उन्हें कही अब नृत्य की को तो मजा चखाने पड़े, और सब जब पता तो चले गई थी काना फूसी में कि इनके पास में पारस पत्थर है, तो यही की वजह से इनके साथ में जब घटना घटी। सो राजा सो श्याम ने कही कि अब तो हम इनको इन्हें मजा चखाएं, सो तई पे लो एक अच्छी दुकान, और पैसा तो हाथ इनके पास में इत्र की दुकान खोल ली। अब का भाव कि इत्र की दुकान तुझे खोल के बैठ गए, और एक दिन एक रात को का भाव कि लेट हते सो कछु आवाजें सी आई। सो बितनक बाग तरफ गए। सो एक बाग में दो ऊपर से है ना जो अप्सराएं हती भी उतरी, सो इन्हें छुप के देखो कि कछु है ना उड़ रहो है। सो उन्हें देखो सो अप्सराएं उतरी, उनके हाथ में दो सीसियाँ थी, सो उन्हें एक सीसिया में से कछु सूंगो और भी बंदरिया बन गए। उन्हें खूब उत्पात मचाओ जो सब कछु देख रहे हो। तो अब जैसे ही है ना वे दूसरी युग में आई, जैसे ही वे उत्पात बचा के फलाल खूब खराब करे और खूब मजे करे उन लोगों ने, और जैसे ही वे सूंग के फिर से परी बनी सो ये पहुँच गए। बोले काहे और तुम ऐसा कर रही हो, हमें राजा महाराज इंद्र ने भेजो है तुम्हारे लाने कि तुम है ना बहुत पृथ्वी में जाकर उत्पात मचाती हो, ऐसे है ना हम तुम्हारी शिकायत करवे के लाने अब हम तैयार हैं, और हम बताएं कि तुम कैसे उत्पात मचाती। सुबह उन्हें डर गई। सो बोले नहीं देखो राजा इंद्र महाराज
से कछु न कहियो, अब ना है हमें तो उत्पाद मचावे के लाने। सो बोले कि तुम्हारी एक ऐसा जा है कि जे दोनों शिष्याएँ भी हमें दे दो। सो बोली ठीक है। सो उनने दोनों शिष्याएँ दे दी, वो चली गई। अब का

कि अब सिसियाँ तो वे लेके चली गई, सिसियाँ लेके जी पहुँच गए। अब इन्हें इन्हें खूब प्रचार भाव, खूब सुंदर सुंदर है ना, इन्हें बढ़िया बढ़िया सुगंधित इत्र जब है ना पता चलो लोगों को इनके पास में इत्र हैं, तो नृत्यकी ने भी कही हमें भी इत्र चाहिए, सो इन्हें बुलाओ। सो जी अपने सारे वह सारे इत्र ले गए, और संगे संगे भी दो ही सिसियाँ सुई ले गए बढ़िया अच्छी संदूक में, सोने की संदूक में भर के, उत तरह तरह के इत्र सुंघाए। सो वो सब जने बहुत प्रसन्न है भाई उनकी माँ बेटी कि बहुत बढ़िया इत्र हैं। सो बोले ये संदूक में कहा है, सो बोले संदूक को हाथ न लगाइयो, जो जो तुम ना खरीद पे हो। बोले अरे हम इतने पैसा वाले, तुम्हें जितनो सोनो चाहिए बताओ, हमारे पास में तो ढेर सोनो है, तुम बताओ तो। सो बोले लगी ठीक है, तुम इतो कह रही हो तो लो जो सूंघो, इसे अच्छो इत्र तुम्हें पास में कौन उड़ा। जैसे जैसी मोड़ी खो नृत्य की खो वो इत्र सूंघा, सुबह बंदरिया की बन गई। सो बोले कि अरे ये तो बंदरिया बन गई, उन्हें अपनी माँ खो मुँह नाक सब नोच मारो और खूब इतर तो उछले। सो माँ चिल्लन लगी तुमने झुका कर दो, तुमने झुका कर दो। सो बोलने लगे कि अब तुम इखो बिटिया कैसे बनाओ। सो बोले कि अब ये खिलाने तो ये कही है कि पारस पत्थर जाने पड़े, वो तो तुम्हारे पास में हुई है ना, वही में रख के जो इत्र सुंघाओ जाए तब जाके जब जब मोड़ी बने। सो बोलने लगी हैं ऐसो है, अब मरता का नहीं करता। उनने कही भैया हमारे पास में है तो पारस पत्थर, पारस पत्थर लाओ। सो बोले कि सुनो जो पारस पत्थर तुम आओ नहीं, हमारे भैया को आए, हम उनके भैया आए। सो बोलने लगी कि ऐसो आए। सो बोले कि अब क्या करने। सो बोले कि हम तुम्हारी मोड़ी को है ना बना तो दें मोड़ी, लेकिन है ना इतना बने जो हमारे पुराने जो हमारे भैया को घर है उतर पे बना है। सो बोले कि वह पिंजरा में डारो और अपने अपने भैया को बुलाओ। सो बोले कि टाट के कपड़ा उतरा के अच्छी राजशाही कपड़ा पहनाओ और दो दो घोड़ा मंगवा, दो घोड़ा में जो है बैठे फटाफट और अपने उतर पे तुम्हारी बिटिया मिल जाए। फटाफट गए उन्हें उखो इत्र दूसरों वालों सुंघाओ, सुबह मोड़ी बन गई और अपनों पारस पत्थर लाओ और जे घोड़ा में टेक मारी और चल दे होते ऐसे कैसे बार राज नृत्य की हती। राजा को पता चल जाते तो वे जितने सिपाही हते वे सारे के सारे ने उनको पकड़ लेते, पारस पत्थर भी चलो जाते और जो जेल में भी डाले जाते। सो इनने टेक लगाई और पहुँचे सो सीधे दूसरे नगर पहुँचे, अपने नगर ले गए। भैया ने कही भैया पारस पत्थर अब तुम्हें ही रख लूँ, हम तो इसकी हिफाजत ना कर पाए। सो बोले कि भैया जो पारस पत्थर तुम्हें रखो, तुम्हें भगवान ने दो तो किस्मत तुम्हारी हती, लेकिन जो है कि जो भी अपन को सामान मिले उसको सही सदुपयोग करो चाहिए। तो भैया ऐसे करके उनने अपनो जीवन अच्छो बनाओ और अपने भैया को जीवन बचाओ, ऐसे करके किस्सा भाई ख़त्म। और हमें पूरी आशा है कि आपको किस्सा अच्छी लगे। और अब किस्सा में बनत है एक प्रश्न है कि मोहन को पारस को पत्थर कौन ने दो हतु, तो मोहन को पारस को पत्थर कौन ने ले लो हतु, तो आपको ईखो उत्तर 15 दिना के भीतर लिख के भेजने हैं। भैया प्रश्न फिर से सुन लो, मोहन को पारस पत्थर कौन ने ले लो हतु, तो ईखो उत्तर आपको लिख के भेजने हैं 15 दिना के भीतर। और अब भैया देखो और तो हम कछु ना कहें, और अब हम सोचते हैं कि अब आपको एक अच्छो उंदासो लोकगीत सुनवा दें। तो सुनत हैं जो समूह सर में गाओ भाव उंदासो लोकगीत।

हाँ तो भैया जैसे कि कही थी कि हमारे हाथ में चिट्ठिया है, जब चिट्ठिया तनक पुरानी है और हमारे भाई हमें हाथ में मिली है तो आज हम पढ़ दे रहे हैं। जब चिट्ठिया डारी है भैया ने शंभू दयाल शंभू प्रसाद लोधी मुन्नी बाई लोधी ने, और जा चिट्ठिया आई है थाना सलीमनाबाद तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी मध्य प्रदेश से, और इनने लिखो है कि हम और हमारी पत्नी मुन्नी बाई लोधी कृषक बंधुओं के कार्यक्रम कृषि जगत को जे सुनत हैं, और इन्हें लिखो है कि लखन भैया मधुवंती दीदी और माधुरी बिन्ना को मेरो मेरा चरण स्पर्श लिखो है इन्हें। तो भैया आपने चरण स्पर्श नहीं अपना नमस्ते ही लिखो तो ज़्यादा अच्छो है, और हम लोगों को भी अच्छो लगा थे। और आपने जितनी प्यारी सी चिट्ठिया डारी खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हें लिखो है कि 4 सितंबर 2025 को बृहस्पतिवार को जो बुढ़िया की एक कहानी सुनाई गई थी, बा उनने पूछे गए प्रश्न को उत्तर ने लिखो है कि कि भगवान ने मतलब कौन कौन से वरदान मांगे हती, बुढ़िया ने कौन कौन से भगवान से वरदान मांगे हती। तो बा उनने कही थी कि 9 करोड़ की माया बहू को नाती और सदा सुहागन रहे, सोने की कटोरी में चम्मच से खीर खाते खाते अपने नैनों से देखें, भगवान के दर्शन करें, कैसे बुढ़िया जो नाती वह नेत्रहीन नाती, और आखिरी वचन में अपने लाने मोक्ष मांगो उनने। और गणेश जी से कही कि आपको हम सेवा हमेशा करत रहें। और तो भैया इनने चिट्ठी में जो प्रश्न को उत्तर लिख के भेजो किरण, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हो रही देखो चलवे की बिरिया, तो उससे पहले हम अपने कार्यक्रम को पता बता दें। पता है कार्यक्रम कृषि जगत बसदेवा द्वारा उपनिदेशक आकाशवाणी जबलपुर कटंगा जबलपुर मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 14 पिन 4800 1। तो अब हो रही चलवे की बिरिया, तो लिए थे विदा सबई बिन्ना भौजी भैया हरन से माधुरी बिन्ना की, राम राम जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। हमारा अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
2: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के, उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर, जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में, उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले, उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए, उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है, या यूएई है, या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है
1: जी।
3: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं, जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है, तो उसके बारे में काफी

0: है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है, उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में है, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी, चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश, जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है,
1: जी
0: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर,
1: हाँ
0: उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं, और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है, और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का, ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, और कल भी इसके बारे में जो है ब्रिक्स A20 के बारे में एक सम्मेलन होगा,
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है, और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है, और पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जो अभी, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी, और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा, और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है, और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी, और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर, उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर, एक मत होकर कुछ बात करते हैं, तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से, क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा, और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में, और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है। और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, फिर जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं, तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं।

0: देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो।
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे यह है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका, वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं, तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे, अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी, शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे। कल रात्रि 9:30 पर संपादक होंगे नीला वाजपेयी। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है बेताब फिल्म से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत RD बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम हीरो, आवाज अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी और भी गीत बाकी हैं, उन्हें सुनवाने से पहले एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संपादित अंश श्रोताओं हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 9:30 पर। संपादक नीला वाजपेयी, समय याद रखें कल रात 9:30। फिल्म संगीत में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। आवाज़ अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

लीजिए अब सुनिए बप्पी लहरी की बनाई तर्ज पर हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम एतबार।

0: एतवार फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: संबंध ही सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने

0: हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.
3: The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries, who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
4: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged

0: प्रोग्राम हंसना मना है की इस नई कड़ी के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। श्रोताओं, आज की इस नई कड़ी में आप सुनेंगे हास्य कलाकार कुलकर्णी बंधुओं की रंगारंग प्रस्तुति, मगर इनके साथ साथ उन कलाकारों को भी हम आपको सुनवाएंगे जिन्हें पिछले कई सप्ताहों से आप लगातार सुन रहे हैं। सुनिए, मगर हंसने पर पाबंदी है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है। और मजे की बात यह है कि आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं कुलकर्णी बंधु, यानी हेमंत और दत्तात्रेय कुलकर्णी।
1: भैया, वो देखो है ना, बताए इतने परेशान हो जाते हैं, यानी मोहल्ले में मकान क्या बना लिया, एक सरदर्द है साहब।
2: ए भैया,
1: ये देखो हम बता रहे हैं ना, वे ऐसे नमूना है कि क्या बताएं है? अब दरवाजा बंद है फिर भी लगे हैं चिल्लाने, भैया भैया, बहुत परेशान।
2: ए भैया,
1: वो है यार, देखो जरा खोलो दरवाजा। वो है,
2: हमको नहीं पहचाने।
1: तुम
2: हो?
1: जयराम जी की।
2: जयराम जी की।

0: राम जी की बड़ी हंसी आ रही तुम्हें तो।
1: आए वाह,
0: नहीं हंस रहे तो मैं आए, जो जो जो कौन सा तरीका है, कोई के घरे जा रहे तो अपने हंस ही रहे
1: नहीं हमें मालूम है,
0: नहीं हमें मालूम है। अब जब दरवाजा बंद है तुम ये नहीं समझ सकते कि नहीं भैया अपने काम धाम में होंगे।
1: हाँ वही तो,
0: नहीं तो तुम तो ऐसे चिल्ला रहे है बाहर से।
1: चिल्ला नहीं रहे, आवाज लगा रहे।
0: हाँ
1: आवाज लगा रहे थे।
0: वाह वाह वाह जी, आवाज लगाए कहा जाता
1: का? हो, हो, हो,
0: हो। चिल्ला वो अलग है।
1: हाँ चिल्ला तो अलग है।
0: अच्छा
1: वो तो खूब जम के चिल्ला जाते।
0: हाँ मतलब पढ़े लिखे हम भी हैं, तुम तो ऐसे बता रहे यार, चिल्ला वो अलग आवाज दे वो अलग है। नहीं
1: नहीं हम आवाज लगा रहे थे, हम तो चिल्ला नहीं रहे थे।
0: खैर कुल मिला के आवाज लगा रहे थे तो काय के लाने लगा रहे थे, का है
1: अजय मतलब कि आप हमें देख लो।
0: अच्छा अच्छा
1: हम आए।
0: वाह वाह, यानी तुम देख हमें देख लो है नहीं, यही से तुम आवाज लगा रहे थे।
1: वही तो,
0: सामने वाले की भी चिंता करू करे कबू
1: का
0: और का, तुम अपनी चिंता कर रहे हैं। भैया भैया भैया हमें देख लो, भैया हमें देख लो, भैया की भी तो चिंता करो।
1: नहीं तो क्या चिंता, क्या होगा,
0: क्या होगा मतलब, अरे अब हमने तुमको देख ला हो मतलब समझ लो हमारा पूरा दिन बर्बाद।
1: तुम्हारा दिन ही बर्बाद हो ना, हमारा तो हफ्ता बर्बाद होगा भैया।
0: कैसी बात कर रहा है, बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं यार हम।
1: नहीं बढ़ चढ़ के
0: नहीं, नहीं हम दिन बर्बाद की कह रहे हैं, तुम हफ्ता बर्बाद की कह रहे हैं।
1: हम कैसे बताएं तुमको समझाएं।
0: नहीं ऊपर से हंस रहे हो तुम।
1: अरे हमें तो मालूम है,
0: जबकि हम तुमसे कह रहे हैं कि हंसना मना है।
1: तो हमें तो मालूम है ना।
0: हाँ तो
1: हंसना मना है,
0: हंसना मना है,
1: मगर समझना तो मना नहीं है ना।
0: हाँ अच्छा, तो मतलब तुम समझदार हो।
1: ये कहने का मतलब,
0: अच्छा क्या कहने का मतलब, तुम समझदार होते तो हमारे सामने आते ही नहीं।
1: काहे?
0: हाँ फिर
1: काहे नहीं आते,
0: गुस्सा ना दिलाओ हमको।
1: काहे नहीं आते, काहे नहीं आते सामने,
0: काहे नहीं आते।
1: चोरी करी है का?
0: चोरी करी है भैया, हम हाथ जोड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो तुम चोरी कर लेते, वो चल जा तो।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हम चोरी करें?
0: अरे और नहीं तो, यानी खुद तो खुद हमको भी पानी में डुबो रहे हैं यार तुम।
1: अरे गजब कर रहे यार।
0: अरे जब हमने तुमको देख लिया है सो तो ठीक है, जब मोहल्ले, अरे हैं हैं कर रहा है यार, बात तो समझो जरा तुम।
1: अरे समझ तो रहे,
0: जब मोहल्ले वाले अगर तुमको देख लेंगे सब लोग मिलकर के जूता मारेंगे हमको।
1: अरे हम मोहल्ले वाले काय को जूता मारेंगे, अब हम आ गए हैं ना।
0: क्या कह रहे, हम आ गए हैं मतलब, कैसी बात कर रहे तुम। देखो
1: नहीं देखो तो आप, आपकी फहमी हो गई,
0: फहमी गलत फहमी।
1: हाँ वे हो गई।
0: हाँ है नहीं ऐसा तुम कह रहे
1: हो,
0: हमारी गलत फहमी हो गई।
1: नहीं मतलब अब देखो, अब मोहल्ले वाले काय को जूता मारेंगे।
0: अरे कैसी बात कर रहे हैं तुम, मोहल्ले वाले तुम्हें जानते हैं कि हमें।
1: अरे मगर हम उनको समझाएंगे ना।
0: हो तुम समझाओगे?
1: हो कहाँ समझाएंगे,
0: तुम्हारे समझ में से अगर मोहल्ले वाले मानते होते तो भाई तुम्हारे पास ना आते, हमारे पास काय को आते।
1: अरे वही तो सब गड़बड़ होगा, ये पंचायत में पड़ गए तुम लोगों के मारे हम।
0: सीधे सीधे मुंह बात करो, हमारे पंचायत में नहीं फंसे तुम।
1: तुम्हारी पंचायत में फंसे, कोई झूठ नहीं बोल रहे।
0: क्या बात कर रहे हो तुम, कौन सी पंचायत,
1: क्या करो तुमने, नहीं करो जो करो, तुमने करो कि नहीं करो।
0: अरे हद हो गई है ना हमारे ऊपर तुम बोल रहे यार, हम तो जैसे आज अपने घरे बैठे हैं भैया चुपचाप, ऐसे ही वो दिना भी बैठे रहे। तुम ही आए थे वो 8-10 लोगों को लेके हमारे।
1: हम नहीं आए रहे।
0: अरे जरा याद करो, अबे इतवार की तो बात है।
1: अरे तो हम कब सोमवार की बोल रहे।
0: अरे यार ठीक से बात करो तुम एक तो है।
1: अच्छा
0: इतवार, इतवार के हम इसलिए कह रहे हैं, हम अपने घर बैठे थे चुपचाप।
1: हाँ मालूम,
0: हम तो उपद के कहूँ गए नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं,
0: तुम वो 8-10 लोगों को लेके आए थे हमारे घर।
1: हम आए रहे उनको लेके।
0: हाँ फिर कौन लाया रहा?
1: अरे उनके साथ हम आए थे।
0: हो गई यार बात करने को, किस तरीका ही तुम्हारा अलग है। ऊपर से मार हंस रहे है।
1: अरे जो सही है सो सही है भैया।
0: अरे का सही है,
1: उनके साथ हम आए थे।
0: अच्छा अच्छा ऐसो मतलब है। हाँ। ये कहो ना। हाँ। अच्छा मतलब उनके साथ तुम आए,
1: वही तो मतलब है।
0: हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है यार। है? नहीं मतलब एक चीज बताएं,
1: हो
0: तुम हो गांव वाले,
1: हो
0: दिखने में भोले भाले और बात बड़ी अंदरूनी करते हो।
1: अंदरूनी भैया बिल्कुल साफ बात करते हैं हम।
0: अच्छा
1: हाँ
0: साफ बात करते,
1: इधर उधर की बात नहीं करते।
0: जो साफ बात है

0: समझ
1: काय
0: बात भर साफ करते हो कि काम भी साफ करना सीखो जरा।
1: अरे काम साफ करने को ही तो परेशानी में पड़ जाते हैं। हाँ नहीं सो
0: क्या परेशानी में पड़ जाते हैं तुम्हें मारे। अब हम परेशानी में पड़ गए कि नहीं जाने, हमने वो चार पांच लोगों की बातें सुन ली।
1: क्या सुन ली तुमने उनकी बातें?
0: अरे तुम भी तो रहे, तुम बिल्कुल का भूल भाल गए क्या? अच्छे से याद करो, हम अपने घर बैठे थे।
1: हाँ बैठे
0: आठ दस तुम्हारे साथ।
1: हाँ
0: तुम भी मिल गए उनके साथ।
1: हाँ
0: अब सबको हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तुम भी खड़े हो गए।
1: अरे तो उनने बोला रहा जैसा हम करेंगे वैसा तुम करो।
0: हाँ अब बता रहा हो तुम हमें। वे कहने लगे कि भैया जी गरीब आदमी है, इसको हरिद्वार जाना है।
1: हाँ।
0: तुम्हारे बारे में कहने लगे।
1: अच्छा वे लोग
0: तो हरिद्वार तो अमीर हो चाहे गरीब हो कोई भी जा सकते हैं।
1: बिल्कुल जी तुम्हें बताओ की क्या जरूरत है।
0: अब आज तुम बोल रहे वो दिन का होगा तो फिर बोलने
1: कहा था चुपचाप रहे ना बस।
0: अच्छा यानी वो दिन उनसे मिल गए आज हमसे मिल गए। अब वे सब कोई कहने जो गरीब आदमी हरिद्वार जाना है।
1: हाँ।
0: हमने चले जान दो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: सो कहने नहीं।
1: हाँ।
0: अब तुम तो चुपचाप खड़े रहे।
1: हाँ।
0: अब समझ में आ रही कि तुम्हें अपनी गोटी साफ करवाने रही कि
1: हाँ
0: काम हाँ बन जाए।
1: अरे उनने खड़ी हमारी गोटी साफ।
0: अच्छा वे सब कहने लगे कि आप एक काम करो भैया, आपके पास ऐसे आए हैं जो गरीब आदमी है।
1: हाँ।
0: अपने ही मोहल्ले का है।
1: हाँ।
0: आप भी मोहल्ले ही में रहते हो।
1: हाँ।
0: आप बड़े आदमी।
1: हाँ।
0: सो कहने लगे चंदा दे दो।
1: हाँ।
0: कहा है
1: उनने बोला था।
0: अरे उनने बोला रहा मतलब
1: फिर
0: 10 साल हो गए हमको मोहल्ले में रहते हुए।
1: हम तो मालूम
0: कोई की हिम्मत नहीं कि हमारे घर आ जाए हमसे चंदा मांग ले।
1: नहीं हो बिल्कुल ठीक
0: है।
1: और जैसे चंदा मांगने वालों को अकल होना चाहिए बच्चा।
0: जे जे जे
1: अपन जिनके दरवाजे जा रहे हैं
0: फिर
1: उनकी औकात तो देखो।
0: ए ए ए ए क्या बात कर रहे हो तुम हमारी औकात?
1: अरे आप समझ देखो जय में गड़बड़ी होती।
0: क्या गड़बड़ी हो? नहीं तुम हमें औकात की बात कर रहे हो।
1: अरे औकात माने तुम तो ऐसे आदमी हो कि 1000 रुपए में से ही फेंक दो।
0: हाँ फेंक दो,
1: चंदा की जरूरत ही नहीं।
0: हाँ नहीं और एक चीज हम बता दें, तुम हम जो भी बात कर रहे हैं हमारे आसपास के 4 लोग हैं भी सुन रहे हैं तरीके से बात करने। तुम हमारे
1: बिल्कुल सही बोल रहे
0: हैं।
1: आप कितनी वक्त नहीं है कि आप तो 1000 रुपए कहो वैसे ही फेंक दो।
0: अरे वक्त बात अलग है औकात बात अलग है यार।
1: अरे गजब कर रहे हैं आप, औकात आई को वक्त कहो जाते है यार।
0: अच्छा तुम हमें न समझाओ, समझ रहे ना? तुम हमें बात में न घुमाओ, हमें तो जाना था। हमने चंदा दे दाओ।
1: हाँ चंदा दे दाओ। कब कब दाओ चंदा तुमने?
0: जैसे भी कहना है कि भैया आप चंदा दे दो।
1: काय पे से काय खिलाने चंदा दे दो?
0: अरे तुम्हें हरिद्वार जाने रहो भी बोलत रहे ना।
1: हाँ तो हमें जाने मतलब हम कौन कहा है?
0: हम कौन कहा है मतलब?
1: का बोला उन तुमसे?
0: जे गरीब आदमी है आप चंदा दे दो। तो हमने
1: यानी हम इतने साल से तुम्हारे मोहल्ला में रह रहे
0: हैं
1: तो तुमको पता नहीं है कि हम गरीब है? और उनने बोला तो पता हो गया कि हम गरीब है।
0: और तो हमें कहाँ से पता चलती?
1: अच्छा
0: तुम्हें बताओ जे गरीबी रेखा को सर्वे हो रहा हूँ।
1: हाँ काय को हो रहा हूँ?
0: गरीबी रेखा के नीचे जो हैं,
1: हाँ,
0: उनकी गिनती हो रही।
1: हाँ,
0: बा गिनती अगर हो गई होती
1: हाँ,
0: तो हमें पहले से खबर होती।
1: अरे कहाँ है रेखा बताओ?
0: हाँ?
1: कहाँ है रेखा?
0: कौन रेखा?
1: अरे तुम बोल रहे हो ना गरीबी की रेखा हो रही
0: है। अरे गरीबी की रेखा मतलब एक मान्यता वाली बात है, तुम नहीं समझोगे, वो पढ़ी लिखी बातें हैं।
1: अच्छा
0: अब
1: मैं जे देखो
0: अब ओटीएम तक अपने गाँव को सर्वे नहीं भाव।
1: हाँ
0: सो हमें जानकारी नहीं कि तुम गरीब में आते हो कि गरीब हो।
1: अच्छा
0: बे आठ दस जने जब बता रहे हैं जो गरीब है। हाँ। तो हमने कहा यार इतने लोग बोल रहे।
1: हाँ।
0: हमने मान ली चंदा दे दो।
1: हमारे से रेखा खींच गई?
0: हाँ नहीं रेखा नहीं खींची जाए। हाँ। वो तो मतलब तुम्हारी
1: हमों के नीचे आ गए।
0: हाँ,
1: हाँ समझ गए।
0: सो अब सबको कह रहे हैं भी आपने दे दो चंदा, एक काम करो।
1: हाँ।
0: मोहल्ले वालों से और करा दो। इतने रुपया में तो काम न बने। अब जब हम भाई चलो कोई काम को शुरुआत कर दी है आधे अधूरे में का रखना, चलो और भलाई सही। पूरे मोहल्ले में हम घूमते रहे, पूरे मोहल्ला वालों से चंदा करो
1: करा रहो
0: है नहीं?
1: हो
0: तुम्हें छोड़ भी स्टेशन तक आए थे, मालाएं पहनाई गई थी तुम्हें है ना? अरे हंस रहे नाच रहे कूद रहे है यार तुम है? यहाँ हमें गुस्सा बढ़ रही है, हमें हमारे प्राण निकले जा रहे
1: काय में से यार।
0: अरे तुम्हें छोड़ने हम हरिद्वार तक आए थे, तुम्हें स्टेशन तक जाना था।
1: हाँ
0: तो फिर क्यों चले आए तुम?
1: अरे वही बताने तो आए, तुम सुना ही नहीं रहे कुछ भी।
0: वही बताने आए मतलब?
1: फिर
0: क्या होगा?
1: अब देखो तुम लोगों ने हमको सबसे कहा कि चलो तुमको हरिद्वार जाना है, तुमने चंदा करो।
0: हाँ करो।
1: हमको माला पहनाई।
0: हाँ बिल्कुल पहना,
1: जुलूस निकालो।
0: देखो जो जो हमने करो है वो

0: के नंबर आया। हाँ जुलूस निकालो।
1: वहां से जाओ स्टेशन।
0: हाँ स्टेशन जावे की कही थी तुमसे।
1: अब हम तो मान लो स्टेशन कितनी दूर है गांव से।
0: अरे तो तांगा कर लेते कोई री।
1: वही तो बताया है तुमको।
0: हाँ।
1: तांगा करो ये।
0: हाँ फिर
1: अब वो तांगा।
0: हाँ।
1: उसे हाथ पांव जोड़े भैया स्टेशन छोड़ दो।
0: हाँ।
1: सब लोगों ने चंदा दो हमको।
0: हाँ ठीक
1: है। तो वो समझ गो कि जो आदमी कोई बड़ो आदमी हु।
0: अच्छा
1: उन्हें तांगा में बिठा लो।
0: हाँ।
1: कहने कहा जाने। मैंने कहा स्टेशन चलो।
0: हाँ।
1: स्टेशन के लाने चलो। अब भगवान का सही यहां से तांगा के जाओ। थोड़ी दूर चलो धड़बड़ धड़बड़ धड़बड़।
0: हाँ।
1: अब अच्छा से रुक गो।
0: तांगा रुक गो।
1: हो
0: अच्छा।
1: अब उन्हें दे हंटर दे हंटर चलवा ही नहीं।
0: एक मिनट कौन के हंटर मारो।
1: घोड़ा
0: घोड़ा के। हाँ अच्छा
1: वो चलो ही नहीं।
0: हाँ।
1: तो जो तांगा वाला नीचे उतरो।
0: हाँ।
1: घोड़ा के सामने गो।
0: हाँ।
1: घोड़ा के सामने ठाड़ो हो गो भाई।
0: अच्छा
1: हाँ लगो नाचे
0: को तांगा वालो।
1: तांगा वालो
0: अरे
1: मैंने कहा नाच रहा गाड़ी छोड़िए चल जल्दी।
0: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: अच्छा से वो आके बैठ गो।
0: हाँ।
1: तांगा खड़बड़ चल गो।
0: मतलब हमारी समझ में नहीं आई क्या होगा।
1: अरे वो घोड़ा के आगे नाचो।
0: हाँ।
1: तांगे वाले।
0: हाँ।
1: और घोड़ा चलन लगो।
0: अजी भाई तमाशा है यार। मतलब हंटर मारे तो घोड़ा नहीं चलो।
1: हो
0: वो आदमी नाचन लगो तो
1: घोड़ा चल रहा
0: हो। यार
1: नहीं अब थोड़ी दूर बाद।
0: अब देखो अब मजे की चीज है हंसी आ जाते है में।
1: बिल्कुल।
0: जबकि आज तक हमने देखो सुनो है कि हंटर मारो तो घोड़ा दौड़न लगा। अच्छा फिर
1: चलो थोड़ी देर बाद फिर रुक गो। फिर वो नीचे उतरो नाचन लगो फिर चलो। मैं बहुत गुस्सा का।
0: हाँ।
1: मैंने कहा सबने चंदा दो हमको हरिद्वार जाना चलो स्टेशन जल्दी से।
0: हाँ,
1: तो अरे यार तुम समझ नहीं रहे भैया।
0: हाँ।
1: जिस तांगा में आज बारात वाली घोड़ी लग गई है कई।
0: हाँ।
1: जब तक एक के सामने नचो नहीं तो ये चलती रहेंगे। <ओ, ओ, अरे, laughs>
2: हंसना मना है।
3: हंसना मना है।
2: अरे हंसना मना है।
3: हंसना मना है।
2: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
3: हंसना मना है।
1: आज यही तो बात है हंसना मना है। हाँ। मड़ा का समझ जाओ तो हंसना कोई खराब बात है।
0: अच्छा अच्छा। हाँ जे बात उम्दा कही यार। मतलब एक बात पक्की हो गई।
1: हाँ।
0: आदमी को हंसी कब आत है अगर बात समझ में आ जाए तो।
1: ये भगवान की कितनी बड़ी माया है देखो।
0: का
1: भगवान की माया है।
0: अच्छा तो हमें बात में ना घुमाना। खैर कैसी भगवान की माया।
1: अकेलो आदमी
0: है
1: जो हंसना जानता है।
0: हाँ जे बात बड़ी मार।
1: आज तक तुमने कोनो जानवर को हंसते देखो।
0: जे बात तो सही। बल्कि हम तुम्हें बताएं बहुत सही उम्दा बात बोल रहे हैं। बल्कि हम तो तुम्हें भी बता रहे हैं और जो मोहल्ले वाले हैं इनको भी बता रहे। सुनो रे तुम लोग भी बहुत अच्छी बात कही उन्हें है नहीं। एक आदमी भर है जो हंस वो जानत
1: जानत है।
0: मतलब भगवान की दया
1: हो।
0: कोई जानवर नहीं हंसे
1: नहीं हंसता।
0: अब समाज जरा गड़बड़ है समझ वे को है
1: कोई?
0: अब अगर तुमने कोई जानवर को हंस तो भाव देख लाओ
1: हो
0: पक्की बात समझ लेने की वो जानवर नहीं रह गो इंसान हो रहा हूँ। नहीं खैर पर तुम हमें बात में ना घुमाओ। बात में ना घुमाओ समझ गया। नहीं हमारी गुस्सा बहुत खराब है।
1: हम समझ रहे
0: हैं। नहीं कुल मिला के जो तांगा आंगा की बात बता के विफल तुमने बात कर। तुम्हें हरिद्वार जाना था बस खत्म।
1: हाँ तो हम वही बताने आए।
0: वही बताने आए मतलब
1: है?
0: अबे तुम्हारी बात खत्म नहीं भाई।
1: अरे हम जैसे तैसे स्टेशन पहुँचे।
0: अच्छा
1: और जैसे टिकट ले हुए पहुँचे जरा सी खिड़की और जो लंबी लाइन।
0: वो तो होता ही है।
1: अरे नहीं बहुत लंबी लाइन भैया।
0: अरे तो हमें क्या बता रहे हैं।
1: मतलब चार पांच आदमी खड़े उनके आगे दो चार आदमी खड़े उनके आगे पाँच छह आदमी खड़े उनके आगे चार पाँच आदमी खड़े।
0: एक मिनट एक मिनट एक मिनट तुम हमें का मतलब अंगूठा छाप समझ रहे का है। एक बार जब तुमने बोल दी बहुत लंबी लाइन रही है नहीं
1: हो
0: तो बस जब तक दो चार ऐसे आठ दस ना होंगे तो लंबी लेन कहाँ से हो जाएगी। हम समझ गए ना।
1: हाँ समझ गए।
0: हाँ फिर दो चार खड़े का खेल।

0: की तक पहुंचा दोगे का?
1: नहीं नहीं आप है? तो अब हमने सोचा कि अगर हम यहाँ लाइन में खड़े हो गए तो कहो गाड़ी कट जाए, टिकट ही ना मिल पाए।
0: अच्छा,
1: तो मैंने एक आदमी से बोला, यार भैया एक ठो हरिद्वार की टिकट ले लो भाई। तो कहने तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? वो आदमी हमसे कहने लगा,
0: अरे तो अब तुमने भी तो गलती करी। अब तो वो आदमी कब से लाइन में लगा है, वो का तुम्हारे लाने खड़ो है का?
1: अरे अब हमने कही
0: वो अपनी टिकट ले रहा हो, तुम अपनी टिकट लो,
1: चले चलो पीछे।
0: हाँ फिर
1: मैंने कहा अच्छा टिकट मतलब चिल्लाओ मत, हम सब से पीछे खड़े हो। और यहाँ से दुखर दुखर लगे, कहो गाड़ी निकल जाए टिकट न मिल पाए।
0: होता ही है होता ही है,
1: मगर हमारी किस्मत अच्छी की टिकट मिल गई।
0: अच्छा मतलब अपने मोहल्ले को मिल गया कोई?
1: नहीं कोई नहीं मिला। अरे जैसे गाड़ी आने की घंटी बजी ना,
0: हाँ।
1: तो मार धक्कम धूमी मच गई, एक दूसरे में गिरे पड़ रहे, हमको टिकट दो हमको टिकट।
0: वो तो हुआ है।
1: अब वो धक्कम धूमी में खूब तमाशा हुआ।
0: क्या तमाशा होगा?
1: हमसे दो तीन नंबर आगे एक दादा खड़े रहे।
0: अच्छा,
1: और यहाँ से जोर को धक्का लगो,
0: हाँ।
1: तो दादा के कांच खुल गए। अब वो दादा समझे कि हम बाहर निकले तो नंबर चला जाएगा।
0: ठीक है,
1: तो उन्हें वहीं खड़े खड़े कांच खोस ले, तो उनके पीछे वाले अपनी धोती पकड़ के, ए दादा ए दादा, अरे दादा।
0: नहीं हम नहीं समझे, मतलब क्या होगा का?
1: अब वो दादा ने जल्दी जल्दी में कांच खोस ले,
0: हाँ।
1: तो उनके पीछे वालों अपनी धोती पकड़े, जोर से चिल्ला रहा, ए दादा ए दादा,
0: हाँ।
1: तो वो दादा कहे खबरदार कांच खेस सके।
0: हाँ वो तो ठीक।
1: तो वो आदमी कह लो हम कांच नहीं खेस रहे,
0: हाँ।
1: जरा पलट के तो देखो।
0: अच्छा,
1: तो दादा ने पलट के देखो,
0: हाँ हाँ।
1: तो खूब ही तमाशा है।
0: क्या तमाशा है?
1: वो दादा ने जल्दी जल्दी में,
0: अच्छा,
1: पीछे वाले की अगली कांच अपने पीछे को हंस ली।
0: जी भी खूब रही
1: खूब रही।
0: अच्छा मतलब
1: होने लगी गद्दम बद्दम बद्दम बद्दम,
0: हाँ।
1: मैं तो भक्का से भी हिचड़ घुस गया।
0: अच्छा,
1: एक छड़ी हरिद्वार की टिकट और पहुंच गया स्टेशन।
0: स्टेशन मतलब तुम्हें टिकट मिल गई थी?
1: बिल्कुल।
0: और तो फिर तुम लौट के काहे आ गए?
1: वही तो बताने आए।
0: तुम्हारों की अबे तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई?
1: अबे शुरू कहाँ हुई?
0: ओ बाप, अबे चालू ही नहीं भाई।
1: है वही तो।
0: अच्छा भैया बोलो।
1: हम जल्दी स्टेशन पहुँचे, गाड़ी घड़घड़ा के अंदर।
0: अच्छा,
1: और ये अच्छी लंबी रेलगाड़ी यार।
0: वो तो होता है,
1: 16-17 डिब्बा लगे।
0: हमें क्या बता रहा है?
1: अरे नहीं, बैठने जगह कहीं नहीं
0: है।
1: हो भगवान के साथ,
0: तुम हमें बता रहे 16-17 डब्बा रहे? देखो भैया जरा है, बात को समझो जरा,
1: हाँ,
0: 16-17 डब्बा रहे तुम हमें बता रहे हो, और तुम ऊपर से हमें जे भी कह रहे बैठ हुए जगह नहीं।
1: नहीं भगवान के तुम
0: का
1: गाड़ी देखी तुमने कभी?
0: अरे हम ऐसे पूछ रहे यार, तुमने देखी?
1: अरे हम तो गए रहे हम तो।
0: हाँ तो कहा है?
1: हाँ कहा सबसे आगे लगा इंजन,
0: तो वो तो होता ही है।
1: पीछे लगो कार को डिब्बा।
0: अरे हाँ ठीक है।
1: बीच में लगे दोठों में लटके डिब्बा।
0: अच्छा,
1: एक लगो नाक को डिब्बा, एक लगो खाओ पियो का डिब्बा।
0: हाँ ठीक है।
1: चार पांच लगे साहब के डिब्बा,
0: साहब के डिब्बा।
1: पांच छह लगे सोबे के डिब्बा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: एक लगो औरतों का डिब्बा,
0: एक औरतों का।
1: अब जनता कहाँ बैठे?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गिनवा दी कौन रेलगाड़ी
1: का? बताए भैया यार।
0: अरे कहा बताए कहा बताए, तुम कहा बताए हो यार?
1: अरे
0: तुम्हें जे, तुम्हें जे ख्याल नहीं कि यार भैया की इज्जत को सवाल है, मोहल्ला की इज्जत को सवाल है?
1: तो हम कहा कहूँ?
0: अरे कहूँ कहूँ कहा कर रहा है यार, तुम खुद बता रहे हो ना, हम जे जाना था मिलिट्री के डब्बा में भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा, हाँ
0: तुम खुद बता रहे हो बीच में दो ठो मिलिट्री का डब्बा रहे,
1: लगे रहे इंजन के बाजू में।
0: अरे तो हमें क्या बता रहे हैं यार, इंजन के बाजू में?
1: अरे हो
0: फिर यही में गुस्सा आ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: इंजन के आगे हो चाहे पीछे हो, इंजन के।
1: अच्छा ठीक
0: है, फिर हमारा मतलब जो है कि तुम उनके पास पहुंच जाते, हाथ जोड़ के खड़े होते, भैया बैठ जान दो यार, गरीब आदमी अकेले हैं। मान लो कोई नाराज होते, तुम कहते ए भैया मत नाराज हो, बात को समझो जरा, हम अकेले आदमी गरीब आदमी। अच्छा मत बैठने, खड़े भर हो जान दो, हम खड़े ही खड़े निकल जाएंगे।
1: बिल्कुल भैया,
0: बिल्कुल भैया, भैया जो तुम्हें बता रहा है।
1: अरे तो हम आई तो तुम तो यहाँ से समझ आए जैसे मैंने कुछ नहीं किया रहा।
0: अच्छा,
1: हम गए रहे उनके पास,
0: मिलिट्री वालों के पास,
1: मिलिट्री वालों के पास।
0: अच्छा भाई,
1: मैंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए,
0: हैं?
1: मैंने कि ए भैया, ओ दादा, बैठ जान दे यार भैया, ए बैठ जान दे।
0: हाँ ठीक है।
1: ये वो मिलिट्री वालों के लिया के यार, ये मिलिट्री का डिब्बा है, तुमको दिखता नहीं, चलो उधर। रात चारी की।

0: हाँ तो मिलिट्री वालों को है ही वो डब्बा।
1: अरे मैंने कहीं भैया छन्ना राज मत, हम गरीब आदमी हाँ? अकेले हैं
2: जे,
1: हमको खड़े हो जान दो, हम खड़े खड़े निकल
0: खड़े खड़े निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक
1: है हाँ? तो वो हमसे कहते खड़े खड़े जाना है तो बाहर खड़े रहो, भीतर मत घुसो।
0: ऐसे बोला रहा?
1: बिल्कुल बोला रहा।
0: अरे
1: मैंने कि कैसी बात कर रहा है
0: हाँ?
1: हमने पूरी टिकट ली है।
0: अच्छा
1: मैं ऐसा ही बैठ हूँ, बिल्कुल जाई डिब्बा में बैठ हूँ, चाहे हमारे गर्दन कर जाए सारे को बिल्कुल से, या तो मार टाड़ है या मर जाए बिल्कुल।
0: अच्छा हाँ, फिर
1: अरे जहाँ हम गरम है वो मिलिट्री वाले समझ गए कि जो आदमी खतरनाक
0: खतरनाक
1: हो, झट ही एक मिलिट्री वालों ने हमको बुला लिया, हे दादा आओ कहीं आओ बैठ जाओ, हम बैठे उनके डिब्बा में।
0: अरे मतलब तुमको जगह मिल गई थी
1: पूरी ब्रेन
0: चार। तो फिर तुम लौट के काहे आ गए?
1: वही बताने तो आए,
0: हद हो गई यार, वही बताने आए, बताने आए का घंटा खाना लग जाए का, बताने आए बताने आए। हाँ बोलो क्या बात है?
1: अरे गाड़ी में बैठ गए, अच्छी जगह मिल गई, लेकिन जब गाड़ी चल गई तब हमारी समझ में आया कि मुसीबत में फंस गए।
0: मुसीबत में फंस गए?
1: हो
0: काय की मुसीबत?
1: वो मिलिट्री वाला अपने साथियों से कहने लगा कि देखो रे तुमको मालूम चेन खींच लो तो गाड़ी खड़ी हो जाती।
0: हाँ तो कौन सी बात?
1: सबने कहा सुना है देखा नहीं।
0: अच्छा
1: तो कहना अच्छा देखो हम चेन खींच रहे गाड़ी खड़ी हो जाए। दूसरे कहते नहीं खींचे चेन, पूछ पाछ हो गए फिर
0: वो तो होगी पूछ।
1: तो वो कहने लगा घबरा काय को रहे?
0: अच्छा
1: जे दादा को बिठा रहे काय के लाने ने? अरे हमारे लाने बोल दो
0: तुमको
1: हो।
0: अच्छा अच्छा हाँ फिर।
1: अरे मैं घबरा का
0: हाँ सही बात
1: बता बुला के बैठा लो फंसा दे रहा।
0: अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक।
1: तो दूसरों में लेटी वालों समझदार रहो
0: हाँ।
1: वो कहने लगा एक काम करो
0: हाँ।
1: चेन के चाय के 250 रुपया लगत।
0: हाँ लगते तो है,
1: पता नहीं हमें नहीं मालूम। हम
0: नहीं नहीं है ना, है ना 250 रुपया लगत।
1: हाँ तो वो कहने लगा देखो 250 रुपया लगत
0: हाँ।
1: सब जन चंदा करके एक के पास रख दो हाँ। और फिर खींचो चेन
0: ले
1: तो ये उन सब ने चंदा करो।
0: नहीं मतलब तुम एक गजबई आदमी हो यार, बिल्कुल ही
1: नहीं अच्छे किस्मत वाले आदमी।
0: नहीं नहीं काय के किस्मत वाले
1: हाँ?
0: मोहल्ला में रहो तो चंदा
1: हाँ?
0: रेल के डिब्बा में बैठ गए तो चंदा।
1: अब भाई
0: किस्मत
1: है।
0: अच्छा किस्मत है हाँ फिर।
1: अरे लेकिन बदमाशी तो देखा।
0: कौन की बदमाशी?
1: जो मोहल्ला में वही होते।
0: ए, ए, ए, क्या क्या बात कर रहे हो तुम?
1: का
0: मोहल्ला में कौन सी? अच्छा तुम हमें हाँ, फिर क्या भाव तुम वो बताओ।
1: सुनी उन सबने चंदा करके के पास 250 रुपया लग गए
0: हाँ।
1: हमसे नहीं लाओ चंदा।
0: तो भी जाना था, गरीब आदमी हो।
1: गरीब आदमी
0: हाँ?
1: हम समझ गए
0: कि
1: ये हमें को फंसाएंगे सारे।
0: फंसाएंगे
1: हाँ?
0: कैसे
1: क्यों
0: है?
1: चेन खींचेंगे तो पूछने नहीं आएगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ।
0: तो उनको मतलब कह रहा हो कि अगर कोई आ जाए तो तुम्हारा नाम बता दें?
1: बिल्कुल उनको ये वही मलतब रहो।
0: नहीं नहीं मतलब तो बदमाशी का है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा फिर?
1: अरे उनने हमसे चंदा नहीं लाओ जब हम समझ गए
0: हाँ।
1: मोहल्ला में हमसे चंदा नहीं लाओ हम समझ गए।
0: अरे हाँ। अरे अरे, अरे कौन को बता रहे है, कौन को सुना रहे है तुम? हम अब जो उल्टी बातें ना करो तुम, समझ गए ना? मोहल्ले वालों ने क्या करो है तुम्हारे साथ?
1: नहीं कछु नहीं करो
0: फिर
1: तो भाई। हाँ उनने बोला तो हम समझ गए
0: हाँ।
1: कि जे हमको फंसाएंगे।
0: अच्छा
1: हम भी तैयार रहे।
0: तैयार रहे?
1: मैंने कि खेचो चेन देखत का हो।
0: अच्छा
1: और जैसे 2-3 मिनट वाले चेन पे पिल गए
0: हाँ।
1: खेचे चा रहे खेचे चा रहे। अरे गजब हो मिलिट्री वालों की ताकत बहुत गजब। अरे गाड़ी घच्चे से ठाड़ी हो गई यार।
0: अरे ताकत की बात कर रहा, तुम भी खेचो ना चेन
1: हाँ।
0: गाड़ी खड़ी हो जाए।
1: अरे राम भजो भैया। जैसे गाड़ी खड़ी हो गई हमारे जाते धकड़ बकड़ धकड़ बकड़ धकड़ बकड़ अब फंसे अब फंसे गाँव हरिद्वार गाँव हरिद्वार। हम ऐसा सोच ही रहे थे इतनी देर में वहां से दरवाजा खोल के गार्ड हमारे डिब्बा में आ गया।
0: अच्छा
1: हो
0: फिर
1: कौन ने चेन खींच गई? कौन ने चेन खींच गई? सब मिलिट्री वाले कहने लगे ये दादा बेटा समझ नहीं रहा बात को और पता नहीं क्या बोल रहे अंग्रेजी।
0: अरे नहीं नहीं
1: अरे भाई मैंने कहा सीधे बोल सीधे।
0: अरे मतलब तुम्हारा नाम बता दिया
1: वही तो।
0: अच्छा फिर?
1: फिर का हम तैयार रहे गारन नाम से पूछा का तुमने चेन खींची? हम तैयार रहे।
0: अच्छा
1: हमने फट से बोल दिया हो हमने खींच हो गार्ड साहब हमें खींच।
0: अरे ऊपर से तुम हमें बता रहे यार हम तैयार रहे हम तैयार रहे
1: और जाने तो
0: खुद ने खींच के बुला लिया अपने।

0: तुम्हें जे खाल नहीं कि नहीं यार, भैया की इज्जत को सवाल है, मोहल्ला की इज्जत को सवाल है।
1: तुम्हारे मारे तो हमें जो
0: अरे तुम्हारे मारे, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब दो जवाब हमको। अब हम पूछ रहे हैं तुमसे, तुमने चैन को हाथ लगाया रहा?
1: अरे नहीं लगाओ भाई यार, नहीं लगाओ
0: हमें नहीं।

0: से दिमाग से काम करत कर लेने रहो।
1: अच्छा
0: मिलिट्री वालों के नाम बता देते फुर्सत।
1: यही तो बात है तुम्हारों में और हमारों में यहाँ। मतलब? तुम हमें मिलिट्री वालों समझ रहे का?
0: मतलब
1: अरे गारद न पूछी हाँ। तुमने चैन खेची
0: हाँ।
1: मैंने कहा हाँ खेची कहीं कार को खींची चैन।
0: अब बोलो।
1: मैंने कहा कार न खेचे चैन। हम गरीब आदमी हरिद्वार जा रहे थे
0: हाँ।
1: कहीं बैठने जगह नहीं मिली।
0: हाँ ठीक है।
1: इन लोगों ने बुला के बैठा लिया अपने डिब्बे।
0: अच्छा
1: अच्छा गाड़ी चल गई
0: हाँ।
1: तो इन सब लोगों ने मिलकर हमको लूट लिया। 250 रुपए छुड़ा लिए वो रखे उसके पास।
0: अरे वाह वाह वाह।
1: अरे फिर तो कुछ पूछो ही नहीं
0: हाँ,
1: हड़बड़ी हो गई तलाशी होने लगी
0: हाँ।
1: मैं चंदा वाले रुपया निकल आया।
0: अच्छा
1: गारंट ने हमको रुपया दे दाए क्या लगा जा दूसरे डिब्बे में मर जाओ।
0: अब है ना पंचायत मतलब देखो तुम्हें 250 रुपया मिल गए थे और तुमको गार्ड ने कहा कि डिब्बा बदल के बैठ जाओ
1: आओ।
0: तुम गाड़ी बदल के चले आए।
1: अरे तुम उनने कही गाड़ी बदल के चले आओ। हमने रुपया रखे जेब में
0: हाँ।
1: मैंने कि सर जब अगले साल मिलिट्री के 4 डिब्बे लगेंगे जब हरिद्वार जाएंगे।
0: बात तो तुमने बहुत सही कही है नहीं और बात तुम्हारी भी हमारी समझ में आ गई। वो जो तुम कह गए बीच में
1: हाँ।
0: भाई हंसना मना है
1: हाँ।
0: समझना मना तो नहीं है
1: हाँ।

हंसना माना है। अभी आप इस धारावाहिक की पहली कड़ी सुन रहे थे, आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमल कांदी एंडे की और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर बैजनाथ गौतम। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित जसराज का गाया राग मुल्तानी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।

अभी आप पंडित जसराज का गाया राग मुल्तानी सुन रहे थे। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ॉन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। सभी श्रोता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है आपकी कसम फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस मधुर गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इसी गीत को पसंद किया है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके बहुत सारे साथी, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के सभी सदस्य, आप सबकी मिलीजुली पसंद पर लीजिए सुनिए किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को फिल्म बेमिसाल में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

खय्याम की बनाई धुन पर गुलजार का लखा गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। गड़िया मोजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वली डोम और कुमारी डब्ल्यू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा और उल्लाह आसमा। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोदिया, सुजीत और रमाकांत दुबे।

और प्रांजल राय, शेरपुर कलां से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये मधुर गीत, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित मन भवन कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति और इनके बहुत सारे साथी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से ही हिना कौसर, वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए दर्द फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार नक्शलालपुरी, संगीतकार हयाम।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए दर्द फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच